0: नाचने का मन है।
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 Live. Have a musti bhara weekend.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into a Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh May.

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a must.

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: The perfect recipe for you to unwind. मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स। It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

जाने क्या मोड़ आया, सिरहाने को छोड़ आया, तोड़ आया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ आया।

security, future, doubt, truth, love, uncertainty.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप और क्या कर रहे थे आप? क्या कहा? मेरा मेरा इंतजार ये जवाब कितना खुशगवार हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं जब आपको कोई कहे कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है यू आर ऑन क्लाउड 9, वही फीलिंग आती है। लगता है इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में कोई तो है जो आपका इंतजार करता है, आपकी कहानियों का इंतजार करता है, आपकी कहानियों को सुनता है। वेल, सबसे पहले तो इसी बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। अरे, मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना आपने? वेल, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर शुरू हो चुका है लेजेंड्स फिर से और मेरा नाम है समर, समर लेजेंड्स वाला। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी मैं जिनकी लेकर आया हूँ वो है जिन्हें मशहूर अदाकारा गीता वाली जैसा ही दर्जा दिया जाता है, यानी उतनी ही चुलबुली और आंखों में शरारती मुस्कान भर कर रखने वाली अदाकारा। वो जिनकी माँ भारतीय सिनेमा की एक अदाकारा थी, वो जिनकी बेटी बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस है, यानी एक नहीं बल्कि कई जनरेशंस जिनकी सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही भारतीय सिनेमा के बॉलीवुड बनने तक के सफर में। तो अब मैं और ज्यादा पहेलियां क्या बुझाऊं, आप समझ गए होंगे। यस, समझ गए होंगे, नहीं समझे? ये
2: हम काय को डरेगा, हम तेरे साथ भाग के थोड़ी आयला है, बैंड बाजे के साथ लगीन कियाला है।
1: ओह, अभी भी नहीं समझे? ओहो, चलिए अब मैं बता ही देता हूँ। ये और सुन लीजिए,
3: अब उसे ढूंढिएगा नहीं, ना ही मेरे पीछे आइएगा। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप मुझे कैद कर सकते हैं, मेरे शरीर को बांध सकते हैं, मेरे दिल को जंजीरें नहीं पहना सकते, आपकी बेटी का।
1: जी हाँ, ये है मशहूर एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी तनुजा और काजोल की मम्मी तनुजा, जिन्हें उनके लाइट रोल्स के लिए जाना गया।
3: मिल

इन्होंने ऐसे ही किरदार निभाए और कहा गया कि ये समर्थ रोल नहीं करेंगी, पर वक्त के साथ इन्होंने कुछ गंभीर किरदार भी निभाए और एक समर्थ अभिनेत्री का टाइटल हासिल किया। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं, उनकी हंसी, उनका लाइफ को एंजॉय करने का तरीका, उनका करियर, सब कुछ। But have patience. कुछ गाने सुन लेते हैं पहले उनकी फिल्मों से। You stay connected to Radio Mirchi 24/7 Live. This is Singapore's only Hindi radio now on the go. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनने के लिए जरूर लौटेंगे। जा कहाँ हैं आप? लौटने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं रहिए, सुनते रहिए।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: Healthy khao, protein khao.
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
3: Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao. Healthy khao, protein khao.
2: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
4: Gigi.
2: Crushable nuts only on GigiMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे wholesome, healthy options.
4: Gigi Mart, your personal grocer.
5: सुनते रहिए Legends फिर से समर के साथ.
6: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से सिंगापुर, मेरे यानी समर के साथ. और आज के हमारे जो फनकार हैं वो हैं गॉर्जियस तनुजा मुखर्जी. देखिए, बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बेहद कमाल का काम करते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ ना, देखिए, वहां से अंतरा मेरी तरफ देखती है. रेडियो पर दिखता नहीं है, मुझे मालूम है दिखता नहीं है, लेकिन मैं मन की आंखों से दिखाता हूँ. अंतरा, तो तुम तो वो खाओ जो रखा है तुम्हारी टेबल पर, संतरा. चलिए मुझे बात करने दीजिए. हाँ, तो मैं गॉर्जियस तनुजा मुखर्जी की बात कर रहा था. तो बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बेहद कमाल का काम करते हैं. मतलब उनकी एक्टिंग देखकर लगता है कि भाई ये तो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने थे. लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो कभी फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहते थे. उनका कोई सपना भी नहीं होता फिल्मों में काम करने का. लेकिन वो कहते ना, किस्मत में लिखा था, तो फिर कुछ ऐसा ही हो जाता है इनके साथ. और फिर ये फिल्मों में आ जाते हैं, और जब आते हैं तो फिर धूम मचा देते हैं. आज की फनकार तनुजा भी कुछ ऐसी ही है. हालांकि पूरा परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से था, और न सिर्फ परिवार, रिश्तेदार भी फिल्मी बैकग्राउंड से थे. 23 सितंबर 1943 को, 23 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ मुंबई में एक मराठी परिवार में. इनके पिता कुमार सिंह समर्थ एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, और माँ शोभना समर्थ 30s और 40s की स्टार हीरोइन थी. परिवार में इनके अलावा दो बहनें और एक भाई भी था. नूतन को तो आप जानते ही होंगे. कौन नहीं जानता नूतन को, बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा. कौन नहीं जानता नूतन को, बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा. वो इनकी बड़ी बहन थी. तनुजा ने स्विट्जरलैंड से स्कूलिंग की. स्कूलिंग के बाद ये इंडिया आ गई. लेकिन इनके माँ बाप की शादी के 10 साल बाद ही दोनों अलग हो गए. दोनों में तलाक हो गया. दोनों अलग रहने लगे तो थोड़ी पैसों की कमी आ गई, और इसी कमी के चलते इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की. हालांकि बड़ी बहन और माँ फिल्में कर रही थी, लेकिन नूतन ने भी शादी कर ली थी. अब जाहिर सी बात है, वो अपने परिवार को संभालेंगी, तो बहरहाल अब पूरी जिम्मेदारी तनुजा पर आ गई. तो इस जिम्मेदारी को कैसे संभाला तनुजा ने, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद. आप सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर तनुजा की कहानी समर के साथ.

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September.
6: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
7: जीजी
5: Krishival nuts only on GGMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे wholesome, healthy options.
7: GGMart, your personal grocer.
8: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ।
9: वेलकम बैक रेडियो मजी 24/7 लाइव। और आज आप सुन रहे हैं तनुजा मुखर्जी की कहानी, मेरी यानी समर की जुबानी। ब्रेक से पहले बात चल रही थी कि पिता कुमार सेन समर्थ और माता शोभना समर्थ के तलाक और फिर बड़ी बहन नूतन की शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब तनुजा जी पर ही आ गई। अब इनके पास न तो कोई डिग्री थी जो ये कुछ और कर लेती, बहरहाल इनको फिल्में ही करनी पड़ी। तो सिंगापुर, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि किस्मत में लिखा होता है तो फिर वही करना पड़ता है, तो इसी तरह फिर तनुजा को भी फिल्में ही करनी पड़ी, जबकि ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका बचपन से। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो पहली फिल्म जो इन्होंने की थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, और वो थी अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ, और फिल्म का नाम था हमारी बेटी।
10: मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं।
9: जी, ये इसी फिल्म का डायलॉग था हमारी बेटी का, उनकी पहली फिल्म का। ये फिल्म इन्होंने जब की तब ये महज 7 बरस की थी, लेकिन एज अडल्ट हीरोइन इन्होंने पहली फिल्म की छवि ली, जिसमें ये एक बार फिर अपनी बड़ी बहन नूतन के ही साथ थी। नूतन ने इसमें लीड रोल प्ले किया था, लेकिन 1 साल बाद ही इनकी पहली फिल्म आई एज अ सोल लीड, नाम था उसका हमारी याद आएगी।

और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केदार शर्मा ने। ये फिल्म इतनी चली नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक किस्सा बहुत चला, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। देखिए होता ही है कि अगर आप फिल्मी परिवार से हैं और आपके परिवार के दो तीन लोग स्टार हैं, तो फिर आप चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेते नहीं है, जल्दी से नहीं लेते। कुछ ऐसे ही तनुजा के साथ भी हुआ। एक तो इनकी हिंदी पर पकड़ बड़ी कमजोर थी, अच्छी नहीं थी जी, इसलिए डायलॉग्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी बात यह कि फिल्म में एक सीन रोने वाला था, लेकिन तनुजा ने डायरेक्टर केदार शर्मा को बोला कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है, हम इसे कल करते। बस इतना बोलना था कि केदार शर्मा ने पूरी यूनिट के सामने तनुजा को थप्पड़ जड़ दिया साहब जोर से। सिंगापुर ये तो गजब हो गया। लेकिन इस थप्पड़ के बाद तनुजा ने क्या किया, क्या किया जानना चाहते हैं? जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानिएगा आप। इस इंटरेस्ट को बरकरार रखिए और इन गानों के बाद मिलिए मुझसे यहीं पर। मैं भी कर रहा हूं आपका इंतजार, आप भी कीजिएगा इन गानों के बाद मेरा इंतजार। मेरा नाम है समर, रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर हाजिर होऊंगा और इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव और शो चल रहा है लेजेंड्स फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी की। शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं वो। खैर, हम फिल्म हमारी याद आएगी कि उस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें डायरेक्टर केदार शर्मा ने तनुजा को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे आज रोना नहीं आ रहा है, मैं कल ये सीन कर दूंगी। सिंगापुर केदार शर्मा के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ऐसा ही कारनामा एक बार पहले भी केदार शर्मा कर चुके थे जब राज कपूर साहब को इन्होंने थप्पड़ मारा था। जी, इतने बड़े डायरेक्टर थे ये, किसी को भी थप्पड़ मार देते थे। जब राज साहब इन्हें असिस्ट किया करते थे तो राज साहब ने थप्पड़ खाया था इनसे, तो साहब तनुजा थप्पड़ खाने के बाद सीधी घर गई उसी वक्त और माँ को जाकर बोला कि ऐसा कुछ हुआ उनके साथ सेट पर। तनुजा को लगा कि माँ हेल्प करेंगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। केदार शर्मा जी की शिकायत कर रही थी तनुजा, लेकिन शोभना समर्थ ने सब कुछ सुनकर तनुजा को ही जोरदार डांट दिया। बोला, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम माँ नखरे कर रही होगी, केदार शर्मा जी ने जो किया सही किया। बहरहाल अब तनुजा क्या कर सकती थी भाई, लेकिन फिर इन्होंने सेट पर ऐसा कभी नहीं किया और उसका नतीजा हम देख भी सकते हैं। फिर इन्होंने कितनी फिल्में की और देखा जाए तो आज भी कर रही हैं, और इसके बाद से वो अपने करियर को, अपनी एक्टिंग को सीरियसली लेने लग गई। बातें भी बहुत सारी बाकी हैं सिंगापुर, सब बातें करेंगे, तनुजा की पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इन गानों के बाद। यू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। और आपको ये शो कैसा लगता है आप इस बारे में हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। प्लीज डू राइट अस, क्या चाहते हैं आप, कौन से गाने सुनना चाहते हैं और क्या चेंज चाहते हैं शो में। अब देखिए मैंने अपना अंदाज बदल दिया अभी के कहने पर, तो आपके फीडबैक्स नहीं फ्यूल है हम लोगों के लिए, तो आप प्लीज डू दैट। हाँ, कुछ लिखिए वहां पर। तो तनुजा जी की जिंदगी पर हम कुछ बातें कर रहे हैं, वेल आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। और 1961 का किस्सा सुनाता हूं मैं। भाई क्या हुआ, 1961 में हिंदी फिल्मों में तो काम कर ही रही थी तनुजा जी, उन्होंने साथ साथ बंगाली फिल्म्स में भी काम करना शुरू कर दिया। बंगाली में इनकी पहली फिल्म आई 1963 में, फिल्म का नाम था देया निया। ये फिल्म सुनील बंदोपाध्याय ने डायरेक्ट की थी और इसमें इनके साथ उस जमाने के मशहूर मारूफ एक्टर उत्तम कुमार थे, बंगाली के सुपरस्टार थे, बंगाली फिल्म्स के उत्तम कुमार। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी, फिल्म में एक रोमांटिक सीन था जिसमें तनुजा को उत्तम कुमार के साथ रोमांस करना था। लेकिन अब पहली फिल्म थी तो तनुजा थोड़ी नर्वस हो रही थी, लेकिन जैसा कि एक इंटरव्यू में तनुजा ने बताया था कि मैं बहुत नर्वस थी तो मैंने उत्तम दादा से पूछा कि दादा की कोरबे किमन करे कोथो बोलबे, मतलब कि कैसे करूं कैसे बोलूं। लेकिन फिर दादा ने कहा कि देखो ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये सब फेक है, आराम से करो। एंड फिर मैंने बहुत अच्छा शॉट दिया एंड वो फिल्म हिट रही, खूब चली। 1961 से लेकर 65 तक तनुजा जी ने कुल मिलाकर 8-9 फिल्में कर ली थी, जैसे कि 61 में उन्होंने की थी मेम दीदी, इसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। 63 में आज और कल, इसमें माला सिन्हा और सुनील दत्त भी थे साथ में। और 65 में चांद और सूरज, इसमें ये नजर आई धर्मेंद्र जी के साथ। और इसी साल भूत बंगला जो महमूद साहब ने बनाई थी, ये फिल्म थोड़ी चली, लेकिन इन सब फिल्मों से बस काम चल रहा था। और एक बात यह भी थी कि इस वक्त तक इन्हें ना हर फिल्म में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल मिल रहा था, कामयाबी और पहचान जिसे हम कहते हैं ना वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो मिली, और कब मिली इसके बारे में बात करेंगे इन गानों के बाद। सो यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मसी 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: खवातीन हज़रात, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस्तकबाल हिंदी फिल्मों के लेजेंड्स की मैं कहानी सुनाता हूँ शो में, जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से और मेरा नाम है समर। हर एक्टर की लाइफ में एक फिल्म ऐसी होती है जिसका उसे इंतजार होता है, जिसके बाद वो फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वो माइलस्टोन जो उसकी जिंदगी में सबसे पहले लगा होता है उसके करियर में, है ना। तो तनुजा की लाइफ में भी वो दिन आया, लेकिन वो कौन सी फिल्म थी बताता हूँ। 1966 में शाहिद लतीफ के डायरेक्शन में और गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बहारें फिर भी आएंगी और इस फिल्म ने तनुजा को रातों रात स्टार बना दिया था।

0: फिल्म का हर एक गाना सुपरहिट हुआ और माला सिन्हा से ज्यादा तारीफ इसमें तनुजा जी को मिली।
1: पूरे फंसे हम तो।
2: क्यों?
1: शराबी जुगो, क्या मुंह दिखाऊंगी जमाने को?
2: देखो ना, मैं शराबी हूँ न चुनीलाल।
1: तू फिर?
2: मेरा नाम चैतेंद्र है।
1: सुषमा के सगे मामा?
2: अब तो जमाने को मुंह दिखा सकूंगी।
0: इतनी खूबसूरत लगी थी तनुजा इस फिल्म में कि क्या कहिए, और बेहतरीन एक्टिंग भी की उन्होंने। ओपी नय्यर साहब का बहुत ही सुंदर म्यूजिक था इस फिल्म में। फिल्म में इनके साथ धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे, लेकिन इस फिल्म में धर्मेंद्र के होने का एक किस्सा है। दरअसल इस फिल्म के हीरो गुरुदत्त होने वाले थे, लेकिन आधी फिल्म की शूटिंग के बीच में ही गुरुदत्त साहब की ट्रेजिक डेथ हो गई। मतलब आधी फिल्म शूट भी हो चुकी थी उनके साथ, और गुरुदत्त साहब के चले जाने से एक महान कलाकार इस दुनिया से रुखसत हो गया। इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कमी आ गई। टाइम्स ने सदी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट बनाई, जिसमें गुरुदत्त साहब का भी नाम था। चलिए अब बात करते हैं इसी फिल्म की, लेकिन अब फिल्म को तो शुरू करना था ना, तो फिर इसमें धर्मेंद्र साहब को लिया गया, और धर्मेंद्र ने भी क्या खूब काम किया साहब इस फिल्म में, कमाल का काम। वेल, इस फिल्म के बाद बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में तनुजा जी को मिली, उन सब की बातें करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उनकी फिल्मों से कुछ और बेहतरीन गाने सुनवा देता हूँ आपको। आप सुनते रहिए तनुजा स्पेशल लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning।
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary।
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you. Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव बरोन। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। आज हम तनुजा की कहानी सुना रहे हैं आपको। तनुजा मुखर्जी, काजोल की मम्मी, नूतन की बहन। और चलिए ब्रेक से पहले जहां मैंने कहानी छोड़ी थी, वहां से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 66 में सुपरहिट फिल्म देने के बाद बहारें फिर भी आएंगी। इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसमें वो फिर से गजब की परफॉर्मेंस के चलते बहुत ज्यादा तारीफ पा गई। फिल्म का नाम था जूल थीव। हालांकि फिल्म के लीड रोल में अगेन वैजयंती माला थी, सेकंड लीड में थी तनुजा। लेकिन इस फिल्म के लिए तनुजा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, अभी अवार्ड नहीं मिला। 68 में फिर एक बार धर्मेंद्र साहब के साथ ही आई। फिल्म का नाम था इज्जत और इसका एक गाना तो बड़ा हिट हुआ। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग संसार में हैं और वो जो हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं, उनका ये गाना फेवरेट होगा ही, या उस लिस्ट में तो होगा ही। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें हैं?

0: इस फिल्म में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फिल्म की दूसरी हीरोइन का नाम लेने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार और सीएम रह चुकी है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक जमाना था जब तमिलनाडु का दूसरा नाम था जयललिता। जी हाँ, यही थी इस फिल्म की दूसरी हीरोइन। और इस फिल्म में वो जो दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि एक गाना महमूद साहब पर पिक्चराइज किया गया है, जिसमें वो कपड़े तो साधु के पहनते हैं लेकिन गाना कुछ इस तरह गाते हैं कि हो कह गए फादर इब्राहिम,
1: कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम।
0: तो 69 यानी अगले ही साल तनुजा जी को वो फिल्म मिल गई जिसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन तो मिला ही, साथ ही अवार्ड भी मिला। फिल्म में इनके साथ बिस्वजीत थे और इस फिल्म का एक गाना तो बड़ा मस्त है जो तनुजा पर ही फिल्माया गया है। कौन सा? ये वाला।

सिंगापुर अभी ब्रेक टाइम है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, म्यूजिकल ब्रेक है वैसे तो बहुत मजा आएगा आपको उसमें, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिल्म हाथी मेरे साथी की। सो यू स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मैसेज 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो।

0: don't miss exciting offers on healthy snacks and Krishival premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Krishival nuts only on ggmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GG Mart, your personal grocer.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ। हम बात करने वाले थे फिल्म हाथी मेरे साथी की ब्रेक पर जाने से पहले, जो 1971 में आई थी। लेकिन इस फिल्म की बात करने से पहले हम बात करेंगे फिल्म प्यार की कहानी की। ये फिल्म भी इसी साल 1971 में आई थी। इसमें अमिताभ बच्चन साहब थे लीड रोल में और साथ में उनकी हीरोइन कौन थी? हमारी आज की लेजेंड तनुजा। लेकिन इस फिल्म में तनुजा के ऑपोजिट जितेंद्र होने वाले थे पहले, लेकिन उस टाइम का एक रूल था कि एक हीरो साल में 6 लीड हीरो वाली फिल्म ही कर सकता है, और जितेंद्र ऑलरेडी वो सब फिल्में कर चुके थे। तो फिर इस तरह अमिताभ बच्चन साहब को इस फिल्म का हीरो बनाया गया। हालांकि ये फिल्म उस साल की सबसे बुरी फिल्मों में से एक थी, लेकिन इसकी भरपाई तनुजा ने इसी साल कर ली हाथी मेरे साथी से। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म की स्टोरी लिखी थी सलीम जावेद साहब ने, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, और आनंद बख्शी के बोल थे, हर तरह से ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई।

इसमें इनके साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना थे और बाद में फिर तनुजा ने काफी सारी फिल्में राजेश खन्ना साहब के साथ की। जैसा कि नाम से पता चलता है हाथी मेरे साथ ही, इस फिल्म में राजेश खन्ना जानवरों को पालते हैं और बहुत ही कमाल का काम किया उन सबने। जिस तरीके से जानवरों के साथ बिहेव किया है फिल्म में वो वाकई काबिले तारीफ है और साथ में फिल्म के डायरेक्टर भी काबिले तारीफ है। एम ए थिरुमुगन ये उनकी फिल्म थी जिन्होंने इतना अच्छा इस फिल्म को डायरेक्ट किया। आप देखेंगे इस फिल्म को तो आपको लगेगा कि हर कोई बना नहीं पाता इस तरह की फिल्म। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा काम था उस जमाने में। इस फिल्म के कुछ दिनों के बाद एक सर्कस में तनुजा को एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था। एक्चुअली वो सारे जानवर एक सर्कस से लाए गए थे जो इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे जिन पर ये सारे सीन्स शूट किए गए थे। तो जब तनुजा अपनी 2 साल की बेटी काजोल को लेकर गई तो वहां जितने भी हाथी थे वो तनुजा को देखकर एक्साइटेड हो गए। फिर जब तनुजा उनके सामने गई तो अपनी ट्रंक से अपनी सूंड से तनुजा के कंधे पर सर रख दिया और तनुजा ने जब उन्हें सहलाया तब जाकर वो शांत हुए। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि हम आपको मिस कर रहे थे। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है सिंगापुर। हाथियों की जो मेमोरी होती है बहुत कमाल की होती है। एलिफेंट मेमोरी इसलिए बोलते हैं जिसे बहुत कुछ याद रह जाता है। आपने भी ऐसा पहली बार सुना होगा शायद, लेकिन ये हकीकत थी। वैसे भी सुनते हैं ये गाना और फिर मिलते हैं आपसे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर तनुजा की कहानी जारी है समर की जुबानी।

0: पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
1: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
0: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
1: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
1: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
1: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
1: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you. This Navratri season, skip the treadmill. Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. Hello! V-Indus presents Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
4: Suat!
1: Join Korean ka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210.
5: Chora ganda thayo!
1: Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
6: Sunte rahiye Legends phir se Samar ke saath.

हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। मेरे यानी समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स पर। आज हम बात कर रहे हैं तनुजा जी की। 1971 में हाथी मेरे साथ ही इनकी फिल्म आई और ये कमाल की हिट रही। इसका जिक्र मैंने किया था इस ब्रेक से पहले। इसी के साथ इनकी एक और फिल्म आई जिसमें इनके अभिनय की जबरदस्त तारीफ की गई और वो फिल्म थी अनुभव। बासु चटर्जी का डायरेक्शन था और इसमें इनके साथ संजीव कुमार साहब थे। बासु चटर्जी ने इस फिल्म के बाद दो सीक्वल और बनाए थे इसी के, जिनमें से एक ने फिर नेशनल अवार्ड भी जीता था। इस फिल्म में पति पत्नी के बीच में आने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को।

तनुजा जी ने जितेंद्र, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना के साथ बहुत काम किया साहब, और सबको भी इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता था। और तपन सिन्हा इनके फेवरेट डायरेक्टर थे। लीड हीरोइन के बाद इन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किए या कैरेक्टर रोल भी करने शुरू कर दिए थे, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ याराना में ये उनकी भाभी बनी। इसके अलावा राज कपूर साहब की प्रेम रोग में भी इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें इनके अपने पति के साथ कुछ डायलॉग्स हैं। सीन कुछ ऐसा था कि फिल्म में जो बहू है उसका रोल पद्मिनी कोल्हापुरी ने किया था, उसका रेप हो जाता है और रेप फिल्म में तनुजा के पति ही करते हैं रजा मुराद। और जब तनुजा को पता चलता है तो उनको गुस्सा भी करना है और समझाना भी है। तो साहब शॉट की रिहर्सल तो हो गई, राज साहब ने कहा शॉट ले लें तनुजा, उन्होंने बोला जी बिल्कुल, तो शॉट लिया गया। इनके डायलॉग्स के बाद ओके बोलना था डायरेक्टर को, लेकिन किसी ने ओके नहीं बोला। तनुजा जी सोच रही थी कि राज साहब ओके क्यों नहीं बोल रहे हैं। हुआ यूं कि तनुजा जी ने वो सीन इतना रियल किया था कि सब खो गए उस सीन में और सब रोने लग गए। राज साहब भी उनमें से एक थे और फिर किसी और ने राज साहब को टटोला और फिर कहा कि शॉट ओके बोलिए, तो इतनी रियलिस्टिक एक्टर बन गई तनुजा। कभी मौका मिले तो आप ये सीन नहीं देख लीजिएगा प्रेम रोग का, वैसे तो फिल्म भी बहुत कमाल की है। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं कुछ और गाने, और गानों के बाद होगी आपसे आखिरी मुलाकात। आएंगे ना मिलने, तनुजा की कहानी अभी जारी है समर की जुबानी रेडियो 24/7 लाइव पर। मिलते हैं इन गानों के बाद, स्टे कनेक्टेड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव और लेजेंड्स फिर से की आज आखिरी मुलाकात, आपका एक बार फिर से स्वागत। आज के शो के बारे में आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा हमारे फेसबुक पेज पर। तनुजा मुखर्जी की हम आज बात कर रहे हैं। तनुजा लिंग्विस्टिक लेडी है, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं भाई साहब। इन्हें फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, जर्मन आती है, बंगाली, मराठी, मतलब बहुत सारी भाषा, हिंदी तो आती है। शी इज अ वेरी टैलेंटेड वुमन फ्रॉम बर्थ। एक बहुत ही खूबसूरत सफर इनका रहा है अब तक का, और अभी भी ये कई फिल्मों में काम कर रही हैं। 2012 में इनके दामाद सुपरस्टार अजय देवगन की एक फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार, उसमें भी ये नजर आई थी। इसके अलावा भी ये बंगाली और मराठी फिल्में करती रहती हैं। हालांकि अपने करियर में कुछ फिल्में इन्होंने छोड़ी हैं, जिसमें से ये उन फिल्मों को अगर करती तो बहुत ही अच्छे किरदार और भी ये कर पाती, जैसे देवानंद साहब की हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें जीनत अमान ने जो रोल प्ले किया था वो पहले तनुजा को ही करना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया ये कहकर कि मैं सिस्टर का रोल प्ले नहीं करूंगी आपकी, मैं तो सिर्फ लीड रोल ही प्ले करूंगी अब, क्योंकि तब तक बड़ी हीरोइन बन चुकी थी वो। तनुजा ने ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से कलर फिल्मों के जमाने तक काम किया, और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के स्टारडम के साथ काजोल के स्टारडम को भी देखा है। हम चाहते हैं कि तनुजा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, ऐसे ही और एंटरटेन करती रहे। और फिलहाल मैं एक फिल्म का और जिक्र करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा, वो है साथिया। इस फिल्म में तनुजा ने अपनी दमदार एक्टिंग से ये बता दिया था कि एक दमदार एक्टर क्या होता है। बहुत कमाल का काम किया है तनुजा ने, इसमें रानी मुखर्जी की मदर बनी हो। चलिए अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं आपसे जरूर मिलूंगा किसी एक और शख्सियत की कहानी लेकर। आप सुनते रहिएगा तब तक रेडियो मसी 24/7 लाइव, और जाते जाते कुछ वादे कर दीजिए, कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद तो मुझे भी रखिएगा आप। हाँ, मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रेनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 पीएम ऑनवर्ड्स सीएससी ऑडिटोरियम टू सेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: The best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: कुछ पुरानी धुनें, कुछ भूली बिसरी यादें,
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
0: कोई आवाज, कोई साज। सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से। समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
2: The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: The perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evening, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: आइए आइए, बड़े दिनों के बाद में आप हमारी आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर. क्यों, क्या हाल चाल है? उफ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ. सीरियसली, कहाँ आ गई हूँ मैं? क्योंकि इतने दिन हो गए इस कुर्सी पर बैठे अकेले आप लोगों के साथ शाम को. ओए होए होए, मजा आ रहा है, मजा. एब्सोल्युटली अ वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइस, दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स और बिल्कुल बिल्कुल रेनुका के साथ.
0: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style.
2: Renuka!
1: होता है यार, हो जाता है कभी कभी. ऐसा कुछ कुछ हो जाता है कि एक ही इंसान को लगता है कि यार मेरे 8-10 ऐसे क्लोन होने चाहिए जो कि हर जगह जा जाके काम करे. और फिर याद आता है कि AI के जमाने में क्लोन बनने बहुत ही आसान है बॉस. तो इसीलिए ऐसी बातें मत मांगो, क्योंकि एक बार जो क्लोन तुम्हारा बन गया ना, तो फिर वो कहाँ कहाँ यूज और मिसयूज हो जाएगा कि आप कहेंगे भाई इस दुनिया को एक ही ओरिजिनल ही काफी है. तो इस ओरिजिनल के साथ में आपकी शाम बिल्कुल एब्सोल्युटली अब से लेके 8 बजे तक टिके रहिए हमारे साथ में. घूमेंगे और साथ ही साथ में पूरी दुनिया से लेकर आएंगे द बेस्टेस्ट ऑफ बॉलीवुड टॉप चार्ट्स. जी हाँ, हमारे टॉप 20 गाने आज के दिन में ऑफकोर्स, और बीच बीच में चलते रहेंगे वो वाले गाने जो आपको याद दिलाएगा कि कभी वो भी सुर्खियों पे हुआ करते थे. तो करें शुरुआत. चलिए, मेरी जैसी वाइब है वैसा ही यहाँ पर आपके लिए मैं गाना लेकर आई हूँ नंबर 20. आप अच्छा जानते हो कि ये मेरी चॉइस नहीं हो सकती, राइट? चलो अलग स्टाइल अलग वाइब के साथ में शुरू करते हैं मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेनुका ऑन अ ब्यूटीफुल थर्सडे. जी हाँ, 24 तारीख है, सितंबर का महीना है और यहाँ पर 5:03 हुए हैं. लेट्स गो.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20.

0: Suddenly sounds like a beautiful Thursday. जी हाँ, अगर Friday होता तो और भी मजा आता. Vibe, vibe, vibe, vibe. Vibe, vibe, vibe, vibe, vibe, vibe. किस किस के पैर और गर्दन साथ साथ में हिल रहे हैं. आई प्रॉमिस यू गाइस, ये गाने को अगर आप 5 मिनट जोर से चलाएंगे जैसे मैं चला के यहाँ पर बैठी हूँ स्टूडियो में, तो फिर सिर्फ एक ही बात होगी, आपकी गर्दन पे डेफिनेटली मोच आ जाएगी. रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका विद यू. और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाना कौन सी फिल्म का है, तो वेल लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज द हाई एनर्जी टाइटल ट्रैक कुणाल खेमू के स्पाई कॉमेडी फिल्म वाइब से. जी हाँ, और बड़े सारे जो जेन जी के लोग हैं ना, वो बोलते हैं आप वाइब मत बोलो, इट इज वाइब. मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं लगता. आप दोनों बोल के बताओ मेरे को, वाइब और वाइब में क्या फर्क है? नथिंग, राइट? बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, कमिंग अप नेक्स्ट इज हमारे जमाने का एक बड़ा ही सुरीला गाना, जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड का फ्लैशबैक. सुनते हैं साथ साथ में अभिजीत की आवाज में. ओए होए, क्या गाना है. गुड इवनिंग.
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक.

मुश्किल भाई बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे भी यहाँ पर कि आप सभी के मैसेजेस आते जा रहे हैं। अरे रेणुका कितने दिन हो गए, हाय ऐसा लग रहा है कि होम कमिंग हो गई है मेरी। सच्ची बड़े प्यार से गले मिल रहे हो, अब 8 बजे तक साथ में टिके रहना, कहीं गए तो बताऊंगी घर आके।

या चीजी चीजी बातें मेरे साथ करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग ये मुझे बोल रहे हैं कि हम तो आपके दिल में रहते हैं, या कहाँ थी आप तो हमारे सपने में आ रही थी। अच्छा, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा था आप लोगों के साथ में? मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई भी मैसेज जो हमारे हॉटलाइन पे आया हो कि रेणुका जी कहाँ है, याद आ रही है उनकी? लिख ही देते एक बार, आज नाटक कर रहे हो सारे के सारे।

0: अंजाम के साउंडट्रैक से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज आप सुन रहे हैं। बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है 20 गाने सिलेक्ट करने जो कि मुझे आज के दिन में करने पड़ते हैं। इट्स टाइम फॉर मस्ती टॉप चार्ट्स। पिछले दो हफ्तों से समर जी ने ये कुर्सी लूट रखी थी थर्सडे शाम को। आज किसी को उनकी याद नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? प्रॉमिस।
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था।
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी।
2: Watch सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
4: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing Island Wide on 25th September at the cinemas near you.
0: भाई साहब क्या गाना आने वाला है नेक्स्ट, क्या गाना आने वाला है। गाना छोड़ो, 19वें नंबर पे ये जो फिल्म है उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड वेलकम बैक गाइस, रेणुका के साथ में मस्ती टॉप चार्ट्स। दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप। देखिए मेरा काम होता है यहाँ पर आपको एनर्जाइज करना। And therefore, I promise you, you're not going to miss a moment of that. भाई थक जाओगे, सुनते हुए थक जाओगे तुम, देखना ऐसे शरीर टूट पड़ेगा क्योंकि ऐसा लगेगा कि उफ किसी ने हिला दिया है आके थर्सडे शाम को। यही तो मेरा काम है। But I'm going to talk about this next gana which is playing on number 19 and it is from the soundtrack of Hanuman Ansh. जी हाँ, I don't know आप में से कितने लोगों ने इस टाइम तक Hanuman Ansh देख ली है फिल्म, लेकिन नहीं देखी है तो उसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। Well,

0: दिस इज अ फिल्म विच इज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी, सच के डॉक्टर, ठीक है, सच के डॉक्टर जिन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया, जी हाँ, अपना MBBS छोड़ दिया और बोला मैं फिल्म मेकिंग करूंगा, क्योंकि सडनली उनके नीम करोली बाबा के साथ में कुछ ऐसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस और स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ कि उन्होंने कहा छोड़ के मैं उनकी फिल्म बनाना चाहता हूँ। ऑलराइट, नाउ ये तो हुई बात, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे के लिए भी आप देखिए, मतलब भगवान की जो माया होती है, आप उसके बारे में सोचिए कि एक स्टूडेंट आप सोचिए जो कि UK में है, उनका नाम भी बताती हूँ, अनुप्रिया नागर की बात कर रही हूँ मैं, 21 साल की हैं, शी इज वन ऑफ द को प्रोड्यूसर्स एंड UK में पढ़ाई कर रही हैं, और सडनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी स्टार्टेड रिसर्चिंग नीम करोली बाबा। क्यों? बिकॉज स्टीव जॉब्स है, या आप जानते हैं कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मतलब हर इंसान इस इन बाबा जी के पास में जाता है। अब क्यों जाता है, क्यों सारे गोरे भी जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो शी स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड देन शी वेंट टू इंडिया, एंड इंडिया जाके चतुर्वेदी जी से शी मेट, डॉक्टर साहब से, और कहा कि मेरे पास जितने पैसे हैं 3 साल के, मैं इस प्रोजेक्ट में डाल रही हूं। तो बस ये फिल्म बनी 2 करोड़ रुपए में, और आप सोच सकते हैं 800%, यू हर्ड मी राइट गाइज, 800% प्रॉफिट।
1: मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे।
0: अब बताओ इसके बारे में मैं क्या ही कहूंगी, सुनते ही गाना पहले और बातें करते रहेंगे। खैर, आज तो पैसों की बहुत बात कर रहे हैं, आपने मरा अगर फेसबुक पेज देखा तो वहां भी कुछ पैसों की ही बातें चल रही हैं। तो चलिए लगाएंगे एक दूसरे की यहाँ पर और साथ में गम करेंगे गलत। कमिंग अप गाना नंबर 19,
2: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 19।

0: There's something about this gana, right? Radio Masti 24/7 पर आप सुन रहे हैं रेनुका को, and yes, this is Masti Top Charts. Masti Top Charts में ये है गाना नंबर 19. आप जानते हैं इनके जो सिंगर हैं सुनील लोधी, जो 25 साल के फोक और डिवोशनल सिंगर हैं, that is from a छोटा सा गांव बुंदेलखंड, जी हाँ, मध्य प्रदेश में. और मध्य प्रदेश के जो सिंगर हैं, इनका टोटल लाइफ चेंजिंग ब्रेक सोचिए आप. लोधी जो है परफॉर्म करते थे लोकल विलेज गैदरिंग्स में, जी चौपाल होती है ना, वहां पर, और स्ट्रगल कर रहे थे बेसिक रिकग्निशन के लिए. एक गाना, जी हाँ, ये वाला, जो कि टोटली रैग्स टू रिचेस स्टोरी है. इट टुक हिम फ्रॉम रूरल मध्य प्रदेश स्ट्रेट इनटू मुंबई रिकॉर्डिंग स्टूडियो. और रास्ते में आप सोचिए, जैसे ही टुक हिज फ्लाइट फ्रॉम भोपाल टू मुंबई, पैसेंजर्स ने उनको पहचान लिया, और पहचान करते ही कहते हैं गाना गा दो. तो मिड एयर, इन द मिडल ऑफ द फ्लाइट, ही वॉज सिंगिंग, और पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो था वो झूम रहा था साथ में. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, राइट? रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते रहिए मेरे साथ ये वाला शो. बातें भी चलती रहेंगी और खिंचाइयां भी चलती रहेंगी साथ साथ, मैसेज भी भेजते रहिएगा मुझे. फिलहाल के लिए गाना नंबर 18 कमिंग अप नेक्स्ट.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं.
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं. मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Trending song number 18.

भाई एक बात तो पक्की है कि पिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर यहाँ पर वापस आया और मेरे साथ साथ में आप सब भी आ गए हो, विच इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ ऑल दिस इवनिंग। जी हाँ, यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि अगले थर्सडे का क्या प्लान है। तो सलमा डार्लिंग, ऐसा है कि अगले थर्सडे को है हमारी एनिवर्सरी, और हमारी एनिवर्सरी का मतलब है कि हमें मिलेगी छुट्टी। ठीक है, तो कौन काम करेगा? मैं तो नहीं करने वाली हूँ, बाकी देखती हूँ, पटा रही हूँ आजकल सबको कि कौन काम करने वाला है। फिलहाल के लिए आपको बता दें अबाउट दिस गाना which was playing just now, and that was from the soundtrack of Awarapan 2. Ji haan, Awarapan 2, oye hoye, homecoming, kya gaana hai, Imran Hashmi, uff, poochho mat. Lekin ye sab baatein bhi chalti rahengi, filhal ke liye mujhe kisi ne ek bada pyar bhara message bheja hai, Davinder ji ne, aur keh rahi hai, beautiful Renuka ji, ab koi beautiful bole to yaar koi unki baat kaise na maane, socho, isliye 1957 का ही गाना सही, लेकिन देवेंद्र जी सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपने आज ब्यूटीफुल कहा है यार। उफ, तब तक मैं रिलैक्स करती हूँ आपके ब्यूटीफुल को पढ़ पढ़कर। आप ये गाना बिल्कुल वी शांताराम जी का, लता मंगेशकर जी की आवाज़, वसंत देसाई का म्यूजिक, एंड एन अमेजिंग गाना इंडीड। बट थर्सडे शाम के लिए थोड़ा सा अलग टाइप है ना, चलो कोई ना। भाई ऐसा है कि जब हनुमान अंश का गाना सुन लिया है तो उसके बाद थोड़ा से इमोशनल तो हम सभी हो गए, और आजकल जो दुनिया में हो रहा है ना, लगता है कि ये गाना बड़ा ही मीनिंगफुल है। साथ साथ में सुने।

0: देविंदर जी यार सेंटी कर दिया सीरियसली। पर आप जानते हैं ये वाली बात कि ये जो लैंडमार्क 1957 की बॉलीवुड फिल्म दो आंखें भारा हाथ का ये गाना है विच वॉज डायरेक्टेड बाय वी शांताराम, उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मुझे मालूम है, एंड दैट इज कि जब क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप जानते हैं कि ये गाना यूनिवर्सल सेक्युलर मैसेज लेकर जा रहा था, इतना डीपली रेजोनेट हुआ दैट इट वॉज अडॉप्टेड बाय अ पाकिस्तानी स्कूल टू बी यूज एज देयर ऑफिशियल स्कूल एंथम। जी, इतना भारी भरकम ये गाना। खैर, बढ़ते हैं आगे रेडियो मसी 24/7 पर, बस कुछ ही देर में सुनेंगे गाना नंबर 17। फिलहाल के लिए बॉलीवुड और डांडिया।
1: दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल बिकॉज द बेस्ट काइंड ऑफ कार्डियो कम्स विद डांडिया स्टिक्स। वी इंडस्ट प्रेजेंट बॉलीवुड डांडिया नाइट, where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises. Suat! Join kariye inka celebration on Saturday 10th October 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210.
2: Chhora ganda thai gaya.
1: Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस डियर मस्ती दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस डियर मस्ती दिल से।
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 17।

आज मेरे सारे सुनने वालों को स्ट्रेस हो रहा है, कह रहे हैं कि क्या हो गया जब ये भक्ति का क्या मतलब शाम के टाइम पे तो भक्ति संगीत का कार्यक्रम क्यों शुरू कर दिया। एक्चुअली आई डोंट ब्लेम यू गाइस, फॉर सम रीजन गाना नंबर मतलब जब शुरू हुआ है 20, उसके बाद में वी हैड हनुमान अंश एंड नाउ वी हैव अ ट्रैक फ्रॉम जय जय राम रामायणा। सो नहीं क्या ही कहूँ मैं।

0: हाय साहब, जय जय राम। हाईली एंटिसिपेटेड पहला गाना नितेश तिवारी की एपिक दो पार्ट की फिल्म अडैप्टेशन ऑफ रामायण। जी हाँ, गणेश चतुर्थी पर ही इस गाने को रिलीज किया गया एंड इट हैज बीन प्रीटी मच बजी टुवर्ड्स। सारे के सारे जो फैंस हैं बड़े खुश हो गए इस बात से। आप जानते हैं, आवाजें तो आपने पहचान ही ली होंगी, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इस गाने के लिए आप सोच सकते हैं इनक्रेडिबल। हमारे जो अरिजीत सिंह हैं उन्होंने 200 टेक्स, मतलब सोचिए 200 टेक्स करके इस गाने को रिकॉर्ड किया। तो आप सोच सकते हैं कि हाउ डीपली इमोशनल ही मस्ट बी, है ना, अबाउट दिस वन। बट इट इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक। इनफैक्ट इस गाने के जो विजुअल्स हैं अगर आप देखेंगे, सो दैट इज अबाउट द शादी ऑफ राम और सीता। सो चैरियट का प्रोसेशन चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर और राम जो है मतलब किस तरह से दिखाए गए हैं, कमाल ही है। और आप जानते हैं कि इस दिवाली पर डेफिनेटली यही वाली फिल्म सारी दुनिया देखने वाली है। लेकिन आप सैटरडे को क्या करने वाले हैं उसके बारे में एक ऑप्शन मैं आपको देना चाहती हूं, और वो है ये।
1: किसी ने उसे मोहब्बत कहा, किसी ने इबादत और किसी ने सुकून। हमने उसे कहा इश्क सूफियाना। दो यादगार एडिशंस के बाद परम स्वरम परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आए हैं इश्क सूफियाना एडिशन 3 बाय सिंगापुर रिनाउंड आर्टिस्ट अमित धमेलिया। 26 सितंबर 7 PM ऑनवर्ड CSE ऑडिटोरियम टिसेंसन रोड। टिकट $60 ऑनवर्ड्स। कॉन्टैक्ट एंड पे नाउ 8138279 0। इश्क सूफियाना बाय अमित धमेलिया।
0: भाई अब ऐसा है कि दो तरह के हमारे सुनने वाले हैं, एक वो जिन्होंने टिकट्स ले ली हैं और दूसरे वो जो इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब टिकट्स हमको मस्ती देगा और फिर हम जाएंगे। तो आप कौन सी कैटेगरी में हैं मुझे जरा लिख के बताइए 9151 8963। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहती हूँ इश्क सूफियाना एक ऐसा शो है जो कि नॉट टू बी मिस्ड है। आई मीन इट, बिल्कुल नॉट टू बी मिस्ड है। क्योंकि अगर आप ये वाला शो मिस करते हैं इसका मतलब है कि आपको अपने साथ टाइम बिताना पसंद नहीं है। 2 घंटे का ये शो आपको जन्नत दिखाएगा, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। आई हैव स्टॉप गोइंग फॉर कॉन्सर्ट्स, लेकिन ये वाला एक ऐसा कॉन्सर्ट है जहाँ मैं जरूर जाती हूँ। इट्स लाइक अपनापन, अमित धमेलिया जी के साथ में अपनापन एंड म्यूजिक को अपनाने का टाइम, बिल्कुल टोटली। अगर आपने नहीं लिया टिकट्स तो आई डू प्रॉमिस गाइस दैट यू विल एंजॉय इट। 8138279 0। और अगर हमसे टिकट्स चाहिए तो मुझे लिख के भेज दो 9151 8963। शायद मैं दे दूं। चाहिए ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 16।

0: जी बिल्कुल, यो यो हनी सिंह पूरे के पूरे ठीक ठाक होकर आ चुके हैं, शराब शरूप छोड़ छाड़ के आ चुके हैं और इस गाने में वाट लगा रहे हैं बादशाह की। आपने शायद वो लाइन सुनी होगी, वो सेज क्या हुआ तेरी वोडका बिकी नहीं, मतलब कि व्हाट हैपेंड डिड योर वोडका नॉट सेल, मतलब ही इज टेकिंग अ डिग एट बादशाह कमर्शियल वेंचर जहां पर उन्होंने शराब की इंडस्ट्री में अपना वोडका ब्रांड लॉन्च किया था और वो बिकी नहीं, वो डूब गए। तो बड़े मजे आ रहे हैं इसको कि भाई साहब अब तो मैं तो सिर्फ मतलब पैसे कमाऊंगा, मैं तो ठीक हो गया हूँ, तू अपने डूबे हुए पैसों को बचा। रेडियो मस्ती 24/7 पर गिविंग यू ट्रिविया एज आई प्ले अलोंग द टॉप 20 गानर्स ऑफ दिस इवनिंग। दिस इज रेणुका विद यू, स्टे ट्यून्ड।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिवल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th टू 25th सितंबर। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
3: जीजी
2: क्रिशिवल नट्स ओनली ऑन gtmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। बॉलीवुड फ्लैशबैक।

और अगर आपने पहले नहीं सुना था मैं क्या कह रही थी, बुंदेलखंड। जी हाँ, ये बुंदेली फोक म्यूजिक है जो कि अपनाया गया है इस फिल्म में। एंड दिस इज अ हेल ऑफ एन अमेजिंग फिल्म जिसने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 350 करोड़ रिटर्न हैज बीन जस्ट शॉकिंग फॉर द होल इंडस्ट्री। और इस गाने के 7 लाख, जी हाँ 700,000 से भी ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स विद इन वीक।

0: भोले बम भोले भोले बम भोले
1: शंभो।
2: दिस नवरात्रि सीजन स्किप द ट्रेडमिल Because the best kind of cardio comes with Dandiya Sticks. We Indus present for Bollywood Dandiya Night. Where the colorful festive vibes meet Bollywood ka music, energetic dancing, good Indian food and exciting surprises.
3: Suat.
2: Join Kariye Inka celebration on Saturday, 10th October, 6 p.m. onwards at Khalsa Association Building, Singapore. Tickets at $30 per adult and $15 per child with group discounts available. Call 9022-1210. Buy your tickets now. Call or WhatsApp 9022-1210.
4: Alright, get your चनिया चोली ready guys, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से कि क्या होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ वी इंडस के डांडिया की। आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑन 10th of October, टिकट्स 9022-1210 पर, और आपने टिकट्स जीती भी हैं हमारे यहाँ पर, और अगर और भी जीतना चाहते हैं तो जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट 9151896 3। फिलहाल के लिए एंजॉय दिस गाना, थिंक ऑफ ऐश्वर्या राय डांसिंग ऑन ढोली तारो, कमिंग अप नेक्स्ट।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। Mosty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: हाँ तो भाई 6 बजने के उस पार आप और हम बिल्कुल यहीं पर टिके हुए हैं और गाने भी यहीं पर टिके हुए हैं। अपने ही पड़ाव पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमने गाने सुने 20, 19, 18, 17, 16, 15 और अब रहते हैं 14 गाने। कौन सा शो चल रहा है? डोंट टेल मी यू डोंट नो अबाउट दैट राइट नाउ। नहीं पता है, बताती हूँ ना।
2: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक, फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
3: आपकी डार्लिंग इस समय थोड़ी परेशान है। पूछिए क्यों परेशान है। वेल इसलिए मैं ना पूछे ही बता देती हूँ। नॉर्मली क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं जो गिनते रहते हैं अपने पैसे जिंदगी भर की। अच्छा अब इतने पैसे हो गए, अब हम थोड़े कंफर्टेबल हैं। नहीं नहीं अभी तो और कमाने पड़ेंगे, अभी तो ये अभी तो वो, मतलब सोचते सोचते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 2500 करोड़ दौलत गिर जाती है एक साल में, ठीक है, खर्च देते हैं वो, मतलब उनकी दौलत गिर गई और फिर भी वो रिचेस्ट रहते हैं पूरे पूरे भारतवर्ष में। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं ऑफ नन अदर देन द शाहरुख खान। जी हाँ, अब 10,000 करोड़ that is his नेटवर्थ राइट नाउ, दैट्स इज वेल्थ राइट नाउ। ओके एंड अभी भी अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन सभी से आगे हैं। बात कर रहे हैं हम किंग खान शाहरुख खान की। जी हाँ, और हुआ कुछ ऐसा है कि बहुत ही दुख के साथ में मुझे बताना पड़ रहा है कि उनकी जो वर्थ है ना, उनकी जो वेल्थ है, वो 2500 करोड़ एक साल में गिर गई है, लेकिन फिर भी वो सबसे आगे हैं। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआ क्या कि ये जो 2500 का जो करोड़ का डिफरेंस है, वेल हिज इट्स नॉट लिमिटेड ऑब्वियसली। उनकी जो अर्निंग्स हैं सिर्फ फिल्मों से नहीं होती है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, या फिर कह लीजिए इनकी एसोसिएशन है विद कोलकाता नाइट राइडर्स थ्रू द नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ना, ये एस्टिमेट्स हैं और फिर ऑब्वियसली चेंजेस तो आ ही सकते हैं, क्योंकि आज प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उनकी वैल्यू थोड़ी नीचे हो गई, कल वो बढ़ गई तो फिर से अमीर हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज के दिन में 10,800 की वैल्यू लेकर बैठे हुए हैं और मैं करोड़ लगाना बार बार भूल जाती हूँ, बट हाँ 10,800 करोड़ की वैल्यू है। और अगर हम कंपेयर करें सेकंड रिचेस्ट एक्टर के साथ में हमारे भारतवर्ष में, तो उनकी नेटवर्थ इस समय है 4,000 करोड़। और बात कर रही हूँ मैं अमिताभ बच्चन जी की, जिन्होंने 80-85 साल की उम्र में जाकर अपनी नेटवर्थ इतनी बनाई है। और ये देखिए लड़का जो कल का आया हुआ, जो आज के दिन में सबसे आगे पहुंचा हुआ है, वो भी उनके डबल वर्थ से भी कहीं आगे। और फिर भी मैं ये सोच रही थी कि यार लोगों की ओवरनाइट वैल्यू 2500 करोड़ से गिरती है ना, और हमारी वैल्यू आखिर क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया है, क्यों किया है ऐसा बताओ। ये तो फेयर नहीं है ना वैसे। खैर फेयर है या अनफेयर, फिलहाल के लिए ये वाला गाना जो आप सुन रहे हैं, ये 11 साल के बाद में 11 साल के बाद में हिमेश रेशमिया और बड़जात्या, सूरज बड़जात्या जी साथ साथ आ रहे हैं अपने हाई प्रोफाइल रीयूनियन करते हुए। और ये होगा प्रेम रतन धन पायो के बाद का ब्लॉकबस्टर। इसका नाम है ये प्रेम मोहलिया। कहाँ से लाते हैं ये नाम, मतलब कैसे चलेगी ऐसी फिल्में? आपको लगता है चलेगी? देखोगे बताना।
4: Trending song number 14.

बाय गॉड की कसम खा रही हूँ, जब भी ये सूरज भर जाते हैं जी एक फिल्म लेकर आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी गंदी औरत हूँ इस दुनिया में जीती हुई। बिकॉज इस फिल्म में सब अच्छे लोग होते हैं, सब अच्छे लोग है ना, और बहुत अच्छे लोग होते हैं सारे के सारे, तो लगता है यार हम कितने गंदे टाइप के पीपल हैं।

0: आई एम ओनली रिमाइंडेड ऑफ सलमान खान एंड मनीष बहल एंड नीलम. मुझे ऐसे ऐसे सामने विजुअल आ रहे हैं. पता नहीं देखोगे कि नहीं, मुझे मेरा पक्का पता नहीं है. गुड इवनिंग एवरीवन.
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था.
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं.
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था.
2: One ancient warning.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी.
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो. जिनकी शेर सवारी है.
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
5: Trending song number 13.

भाई गाना तो सुनने वाले बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये वाला गाना है, बड़ा ही सोलफुल सा इंडी पॉप हिंदी ट्रैक बाय सिंगर सॉन्गराइटर आदित्य रिखारी। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुआ है ये गाना एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मेजर सिंगल फ्रॉम हिज हाईली एंटिसिपेटेड एल्बम विच इज कॉल्ड बिटवीन डिस्टेंसेज। अब हमारे डिस्टेंस की कुछ बात हो जाए, रेडियो मसी 24/7 पर सही जगह पहुंचे। सर सही जगह है ये बिल्कुल, कौन है? रेनुका है ना, और कौन हो सकता है यहाँ पर भाई। अगर थर्सडे शाम है तो मैंने क्या किया इस बार कि समर जी को धक्का मार ही दिया। मैंने कहा बस बहुत हो गया, दो हफ्ते से आप मेरी ना कुर्सी लेके बैठे हो, हर बार कह देते हो आज इसका बर्थडे आज उसका बर्थडे, मुझे शो करने दो। अरे भैया क्या बात है, मतलब आपको शो का टाइम मिलता है ना फ्राइडे सैटरडे।

संडे आप वहीं पर रहा करो, लेकिन थर्सडे शाम को उनको शौक चढ़ाया। अब शौक का क्या करें भाई, बड़े बूढ़ों की बातें सुननी पड़ती हैं। बट ऑन रेडियो मसी 24/7 यहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस को दूर करने के लिए आ गई है मेरी रुचिका डार्लिंग। और रुचिका डार्लिंग यहां पर मेरे को लिख रही है, हेलो सुनियो आ गए वापस। हाँ बिल्कुल आ गई, मतलब बहुत ज्यादा वेलकम मिला आज तो मुझे यहां पर हर किसी से मिला है। और साथ ही में ये भी कह रही है कि आई जस्ट ट्यून्ड इन, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही अभी तक, सिर्फ गाने चल रहे हैं क्या? उफ, शक का इलाज कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगला गाना जरूर हो सकता है, लेकिन अगला गाना जो नंबर 12 पर है वो सुनाने से पहले, जी जी बिल्कुल सही पहचाना, आंखों से हमने कुछ नहीं कहा, ये गाना नंबर 12 है। और सही पहचान रहे हो आप, ये आंखों से तूने 2.0 है, जिसमें कि डिक डिक डिक डिक डिक यही चलता रहेगा बस। उफ, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। लेकिन मैंने क्योंकि सोचा रुचिका जी बहुत टाइम के बाद में मुझे मिल रही हैं, तो उनकी पसंद का एक गाना हो जाए क्या? और आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज द 90s का गाना। कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं टॉप चार्ट से और बढ़ते हैं मधोश दिल की तरफ।

आप यहाँ पे कमेंट्स देखिए, कहा जा रहा है मुझे कि हमारे साथ रहते रहते आपका भी टेस्ट अच्छा हो गया। अच्छा सलमा, एक बात सुनो, ये गाना ना बेटा मैं तब से सुन रही हूँ जब से तुम्हें तुमने होश संभाले होंगे, समझे तुम। एंड दैट्स नॉट बिकॉज मैं तुमसे बड़ी हूँ, इट इज ओनली बिकॉज मेरा टेस्ट तुमसे भी बहुत पहले से अच्छा वाला है। पूछ लो रुचिका से, ये रुचिका और मेरा गाना कितना पुराना है, बिल्कुल आपस का। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट लव दिस गाना, थिंक अबाउट इट। कुमार सानू, लता मंगेशकर, 1998 की ये मूवी, विच इज जब प्यार किसी से होता है, हमें तो रोज रोज होता है।

0: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक। जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची। गाएंगे वो, गाएंगे आप सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स। टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
1: मस्ती पार्टनर इवेंट।
2: भैया साहब, जब मस्ती किसी पार्टनर करती है ना इवेंट के साथ में, तो आपको कोई भी शक नहीं रहना चाहिए दैट इवेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द इवेंट दैट यू नीड टू बी एट। यस, रेडियो मस्ती 24/7 पर। चलिए अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर आगे और मैं आपको बताऊंगी कि बैकस्टेज सिबलिंग्स, जी आपने देखा होगा आरजे अंतरा के साथ में इनका जो एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्वर्सेशन हुआ था मस्ती एवीआई पर लास्ट वीक पर। वेल, दे वेरी वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल, वेरी अमेजिंग सेट ऑफ सिबलिंग्स। और आप मान सकते हैं कि जिनके मम्मी डैडी ने उनको बचपन से भजन वजन सिखाया अच्छे से कि भैया सुबह उठो और भजन गाओ, मतलब जेन जी, और वही काम करते हुए मम्मी डैडी की बातें मानते हुए दे जस्ट डिसाइडेड टू गिव अप ऑन देयर प्रोफेशंस एंड अडैप्ट दैट लाइफ स्टाइल फॉर एवर। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े शरीफ से बच्चे से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो काफी बदमाश हैं दोनों के दोनों, बट दे हैव दिस साइड ऑफ देयर्स जहां पर रम जाते हैं ना, जैसे कि एकदम गाने में, किसी भी तरह के गाने, एंड दे कॉल इट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट अ रिलीजियस एक्सपीरियंस। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा तो मतलब कि रिलीजन, मैं इतना रिलीजियस नहीं हूं तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां तो बिल्कुल सिर्फ भगवान की बातें होंगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। ईच वन ऑफ अस नीड्स दैट स्पिरिचुअल जोन टू बी इन, राइट? और कोई बुराई नहीं है जाकर सबके साथ में एक ऐसी इवनिंग बिताना जहां पर वाकई लगे वापस आए तो एक सेटिस्फैक्शन सी हो, एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट। दिस म्यूजिक एंड दिस इज कॉल्ड बैकस्टेज सिबलिंग्स। आप टिकट्स ले सकते हैं सिस्टिक से, दे आर $60 ओनली, एंड ऑफकोर्स यू कैन गो इन एंड गेट योर टिकट्स एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवनिंग विच इज बैकस्टेज सिबलिंग्स। अब इसके साथ में भाई, अगली बात करने से पहले मैं गाना नंबर 12 सुनाई ही दूं क्योंकि यहां पर लोगों को इंतजार है। वापस आके और बातें करने वाली हूं मैं आपसे, जाना मत कहीं पर, 6:24 हो रहे हैं।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 12।

0: The funny thing is, इस गाने का नाम है आंखों से तूने, and तूने is spelled as T-U-N-E, and फिर लिखा है 2.0. तो मैं तब से सोच रही हूँ आंखों से ट्यून 2.0, आंखों से ट्यून 2.0. तब मैं बाद में समझ आया आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये एक्चुअली वो है. बट यू नो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर तूने इंग्लिश में कैसे लिखे, ट्यून भी तो लिख ही सकते हैं ना.
1: Musty Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka!
0: ऐसा है कि आपकी डार्लिंग कुछ दिन पहले यूएस में थी, ऑल राइट. और जब मैं यूएस में थी तो मेरे से पूछा जा रहा कहां गए थे, क्या किया था. तो मैं सिर्फ सीधी सी बात करती हूँ, व्हेनेवर आई नीड टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आई स्टार्ट फीलिंग, मुझे तो बुखार ही चढ़ जाता है. और वाकई इस बार जाने से पहले एक दिन चढ़ गया था, ठीक है. और वो बुखार रहा क्योंकि 18 घंटे की फ्लाइट, उसके आगे फिर से 6 घंटे की फ्लाइट. मैं तो मतलब मुझे लगा क्या हो गया भाई, ये कितनी बड़ी दुनिया है, क्या बात है, मतलब पहुंच क्यों नहीं रहे हम. और ऊपर से वापस आते टाइम जब मैंने किया स्क्रीन अपने सामने, तो वहां पर दिखाई दिया कि भाई हम कहां उड़ रहे हैं. तो एक तरफ तेहरान था, दूसरी तरफ बगदाद था. तो वैसे ही मेरी नींद उड़ गई. मैंने कहा यार व्हाई डिड आई हैव टू स्विच ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम जब हम यहां पर उड़ रहे हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर, दिस इज रेडियो का विद यू गाइस, एंड इट्स अबाउट 6:29 बाय द स्टूडियो क्लॉक, एंड दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स. हाँ तो भाई, जब भी कोई मेरे से पूछता है कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, तो मैं कहूंगी वेरी नाइस एंड वेरी बैड. बिकॉज जब सारे के सारे गोरे लोग भारत जाते हैं तो वो मांगते हैं हार्डशिप अलाउंस, ठीक है. हार्डशिप अलाउंस तब दी जाती है जब वाकई आप हार्डशिप फेस कर रहे हो. अब भैया भारत में तुम जाते हो एक्सपैट के जैसे, और वहां पर जाते ही तुमको मिल जाता है ड्राइवर, दो तीन काम करने वाले लोग घर के अंदर, बाहर गार्ड मिल जाता है, बड़े घर मिल जाते हैं. किस बात की हार्डशिप है पेओदी तुम्हारी है. लेकिन हमें यूएस जाने के लिए हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलती है. मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्टेंस, दरवाजे से बाहर निकलो तो दूर दूर तक, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, ठीक है. अगर एक कुत्ता दिख जाए कभी, जो कि दिखता नहीं सड़क पे, अगर दिख जाए तो इंसान बोलता ओए कुत्ता दिखा, मतलब है यहाँ कोई रहता है, यहाँ तो मतलब बहुत पॉपुलेशन है. लेकिन अगर आपको शॉपिंग जाना है तो आपके पाँव दुख के साइड पे पड़ जाएंगे, क्योंकि शॉप से नहीं खत्म हो रही. अगर आप ओके आई एम नॉट गोइंग टू क्रिब एनीमोर. ओवरऑल आई सॉ फैंटास्टिक कॉन्सर्ट ऑल्सो इन न्यूयॉर्क सिटी, एंड आई मस्ट टेल यू द वाइब ऑफ द कॉन्सर्ट. ओए होए, 20,000 लोग पूरे टाइम, चाहे उन्हें कुर्सी के पैसे दिए थे लेकिन बैठ के नहीं देखा उन्होंने कॉन्सर्ट, वो खड़े रहे. ये हैरी स्टाइल्स का कॉन्सर्ट था, एंड आई टेल यू आई फेल इन लव विद द गाय एज वेल. फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे. ये तो बातें हुई मेरे यूएस ट्रिप की, और अगर कोई और आपके पास सवाल है तो बिल्कुल मुझे लिख दीजिए, मैं बिल्कुल हैप्पीली आंसर करूंगी, क्योंकि जेट लैग डू ना, इसीलिए वैसे भी मुझे टाइम तो पास करना ही है. बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, सपना जी जो हमारी लिसनर है वो इस वीकेंड पर बहुत ज्यादा बिजी है. फिलहाल आप सुन लीजिए कहां बिजी है, वापस आके बताऊंगी कि वो वहां पर क्या क्या करने वाली है.
1: Got something amazing to sell, serve or showcase? Then don't just visit the Festive Bazaar 2026. Be a part of it. Mountbatten CC IAEC presents Festive Bazaar 2026 and stall bookings are now open. Fashion, food, gifts, handicrafts, something unique. Showcase your business to the community. Plus, live performances, kids activities, joy rides and lucky draws, all to keep the festive buzz going all day. 27th September, 10 a.m. to 6 p.m. Mountbatten CC Multipurpose Hall. Limited stalls available. Book yours now. For inquiries, call 8330-2518. Festive Bazaar 2026, where shopping, food and community come together.
2: It's time for Musty Song of the Hour.
3: Song

दिस इज वन गाना जो मैं चाहती हूँ कि आप जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय गाइस. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. विकी डोनर के साउंड ट्रैक से विशाल ददलानी, सुनिधि चौहान की आवाज, एंड दिस इज मर जाया. लवली सॉन्ग.

0: वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना लगता है कि यार मर ही जाएंगे हम, है ना भाई। रेडियो मसी 24/7 पर अगर आपको लगता है कि आप भी हमारे बिना नहीं जी सकते तो हमें एक मैसेज भेजिए ना 9151896 3 पर। अभी भेज दो यार, मतलब बाद में जब मैं जाने लगूंगी 8 बजे तो सबके मैसेज आने लग जाएंगे। हाँ नहीं तो दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर spicy and they are happening. Join us on Masti Top. You know what's the amazing part about this gana? It is so beautiful. Aur isko sirf aur sirf ek raat mein likha gaya tha. Can you believe it? जी बिल्कुल, पर्सनल इमोशंस किसके, बन चक्रवर्ती के। तो ये जो कंपोजर है ना, इनको बड़े टाइम से कोई ब्रेक नहीं मिल रहा था और मतलब रियल लाइफ हार्ट ब्रेक भी हो रखा था, तो इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो जो डायरेक्टर है शुजीत सरकार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीन बनाया, ठीक है, और बड़ा ही पेनफुल सेपरेशन की बात करी लवर्स के बीच में, और फिर उसके बाद कहा जा अब तू जाग पूरी रात और तू कुछ करके दिखा, ठीक है। ये बंदा गया, इसने ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई कि ये गाना मेरे तक पहुंच गया, और जब मेरे तक पहुंच गया तो आपको पता ही है कि फिर आप तक भी पहुंच जाएगा, और भाई कमाल ही हो गया। रेडियो मसी 24/7 पर ब्यूटीफुल ट्रैक जस्ट नाउ फ्रॉम विकी डोनर आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अप नेक्स्ट इज क्या गाना आने वाला है, कौन सा आने वाला है, नंबर 11 पर। That's another track from Avarapan 2. How beautiful. And Gamdas, also this hour, aap sunenge, aur wo gana hai ye wala. जब हम तूने TUNE लिखते हैं तो टुनु टुनु कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, बताइए मुझे जरा। रेडियो मस्ती 24/7 अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 11।
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
2: Don't miss exciting offers on healthy snacks and crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Sham ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
1: Healthy khao, protein khao, healthy khao, protein khao.
2: Healthy munching ka perfect partner, aap sirf ek click door. Crushable nuts only on gtmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
3: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
4: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 11।

हुए बड़े ही दुखी आ रहे लोग मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जिम के लिए गाना चला दो। भैया मैं क्या करूं, गाना नंबर अगर 11 यही है तो यही है ना, मतलब थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने ये बोला ओरिजिनली चला देते हो, तो बहन मैंने थोड़े ना नया रिलीज करा है 2.0 है, अब 2.0 ही अगर आया है टॉप चार्ट्स में तो मैं पुराना कैसे चला देती, मतलब हेलो टॉप चार्ट्स का आप मतलब समझते हैं ना, कि मतलब जो लेटेस्ट वाले गाने हैं सिर्फ वही चलते हैं उसमें, और बीच बीच में मेरी मर्जी के है ना, कभी कभी आपकी भी। अब देखिए ना यहाँ पर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर का जो डिमांड आया है, मैं सोच रही हूँ चलाऊं या ना चलाऊं, आपका क्या मूड है, चलाऊं क्या?

0: पता है इंसान बड़ी ही अजीब सी फ्लेक्सिबल चीज है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत चूचू करते हैं कि हमें नहीं करना, चेंज नहीं करना, लेकिन फिर थोड़े दिनों में ना हम खुद ही अप्रिशिएट करने लग जाते हैं जो भी हमारी जिंदगी में चेंजेस होते हैं, है ना। क्या करे, इंसान बड़ा ही फ्लेक्सिबल किस्म का इंसान है। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस राइट नाउ फिलोसॉफिकल नहीं हो रहे, मैं बताने वाली हूँ कि किसी ने यहाँ पर मुझे एक मैसेज लिखा है, वो कह रही है बहुत ही भसड़ वाली जिंदगी हो रखी है, मतलब आज का दिन बहुत ही गंदा वाला दिन बीता है, तो प्लीज कोई ऐसा गाना चला दो जिससे कि एनर्जी आ जाए। अब क्या है कि रूल के हिसाब से ये वाला गाना होना नहीं चाहिए टॉप चार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको गाना नंबर 10 ऑलरेडी बता दिया, लेकिन क्योंकि रूल बुक को हम टोटली अवॉइड कर देते हैं जब हमारा कोई खास इंसान हमसे कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो बिल्कुल मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर आरजे अंतरा आ जाओ, तुम्हारे लिए भसड़ वाला दिन क्यों हो रखा तुम्हारा ये तो बताओ हमें।
1: Musty Song of the Hour.

0: of you in the gym, guys. Right now, this is Radio Masti 24/7 and absolutely live from the studios. This is Renuka. Masti Top Charts सुन रहे हैं आप. ये गाना बिल्कुल टॉप चार्ट्स में नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल डल हुए पड़े आज के दिन में. हिल जाओ, हिल जाओ, हिल भी जाओ. Well done. All right. अब जब तक आप थोड़ा सा अपना पसीना सुखाते हैं, हम आपको बताते हैं कि भाई हमारे माउंट बैटन सीसी में जो होने जा रहा है, विच इज ऑन संडे. आप जानते हैं संडे पूरे दिन आप वहां पर आ जाओ, ठीक है, माउंट बैटन सीसी में स्टॉल ही स्टॉल है. और मुझे तो ये पता लगा है कि ओवर रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि बच्चे बूढ़े और जवान सारे के सारे पहुंच रहे हैं वहां पर सुबह से लेकर शाम तक. और मतलब एंटरटेनमेंट है और स्टॉल्स हैं और खाने पीने का सामान है और मजे ही मजे हैं. बच्चों के लिए तो कूदने की भी जगह है, मतलब वो जो होते हैं ना बड़े बड़े जो टॉयज लगा देते हैं, क्या कहते हैं यार उनको, बलून वाले जो टॉयज होते हैं जिनके अंदर हवा भर के बच्चे कूदते रहते हैं, सो वो सब भी हो रहा है वहां पर. तो आ जाइए, इट्स लाइक अ फैमिली डे आउट, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. और हमारी जो सपना जी है, सबसे बड़ी बात है, उनका एक स्टॉल है वहां पर जिसके लिए हम सब बिल्कुल वहां पर पहुंचेंगे और टेस्ट करेंगे उनकी बर्फी, मुरुकू, कुकीज जो रखने वाली है, और साथ में हैंडमेड एनवेलप्स भी. और वो कह रही है सब कुछ फ्री ले जाओ. ये उन्होंने कहा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है. बट ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइज, वी वांट टू सपोर्ट ईच एंड एवरी इनिशिएटिव, एंड कम्युनिटी का तो मतलब हमारा कुछ ज्यादा ही लगाव है, राइट? सो बी देयर गाइज ऑन माउंटबेटन सीसी. जी हाँ, बिल्कुल संडे 27 सितंबर को सुबह से लेकर शाम तक आ जाना, बहुत मजे करेंगे. मैं वहीं मिलूंगी. ट्रेंडिंग सॉन्ग
1: नंबर 10. पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम?
2: नाम. मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: पगला दूंगा पूरे देश को।
1: भाई रवि किशन जी की तो मतलब बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पर इस समय बात एक और होने वाली है, विच इज एक सहारा। जी हाँ, पहली एनिवर्सरी एक सहारा की। कौन है ये आखिर, बताएं आपको। एक सहारा विच इज मोर देन अ नेम, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ यूनिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और प्यार। और एक सहारा की पहली एनिवर्सरी, जी हाँ, 26 सितंबर को, इसी सैटरडे को 6 बजे शाम के खालसा क्लब 4th फ्लोर फंक्शन हॉल में होने जा रही है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि टिकट सिर्फ $5 है, जिसके अंदर फर्स्ट लकी ड्रॉ प्राइज है 916 गोल्ड कॉइन। साथ ही में बाकी के भी लकी ड्रॉ प्राइजेस है, कैश प्राइजेस है, शॉपिंग वाउचर्स है, डोर गिफ्ट है, गेम्स है, एक्टिविटीज है, वेज और नॉन वेज 10 कोर्स का खाना है गायत्री रेस्टोरेंट से, और साथ ही साथ में पहली एनिवर्सरी का केक भी है। आप रिजर्व कर सकते हैं अपनी टिकट्स ऑफ कोर्स राइट नाउ बाय कॉलिंग 9002-9958। माया को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9002-9958। $5 की ये टिकट है एंड ऑफ कोर्स उसमें लकी ड्रॉ भी इंक्लूडेड है। तो बस एक सहारा ऑन द 26th of September 6 बजे शाम को खालसा क्लब में। सुने अगला गाना, ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट, गाना नंबर 9।
2: Trending song number 9.

एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वंडरिंग कि ये गाना कहाँ से आ गया, यहाँ पर आई वांट टू टेल यू कि आज की प्लेलिस्ट जो है ना, क्योंकि मैं दो हफ्ते से जरा यहाँ पर नहीं आई थी टॉप चार्ट्स के लिए, तो ये सब ना बदल के उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया। कुछ ऐसे गाने डाल दिए जो मुझे लग रहा है मेरे से पर्सनल दुश्मनी मेरे से ही नहीं सिर्फ आपसे भी निकालने के लिए डाले हैं। सो दिस इज मधोश फ्रॉम द ट्रैक ऑफ टॉक्सिक। मुझे नहीं लगता दिस गाना विल रिमेन ऑन माई लिस्ट नेक्स्ट वीक, आई प्रोमिस यू दैट ऑलमोस्ट।

वाकई सारा हफ्ता जान निकाल ले अमित त्रिवेदी का कंपोजिशन, साथ ही में आप सुन रहे हैं अमित त्रिवेदी ही की आवाज अलोंग विद आदित्य जैन और अक्षय धवन. दिस इज फ्रॉम द एल्बम वाइब. बोला था ना जेन जी कैसे बोलता है वाइब, वाइब आप जरा ट्राई करो बोलना ठीक से वाइब.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: और आपको जोश में रखने के लिए 5 बजे से यहाँ पर रेणुका आई हुई है एंड थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम आई हैव टू से। और बार बार मेरे से पूछा जा रहा है कि अगले थर्सडे का क्या प्लान है। बहन मुझे आज का प्लान नहीं समझ में आ रहा, मैं अगले थर्सडे की क्या बात करूंगी, सोचो तो सही एक मिनट के लिए। मुझे चलो लेट मी गेट अ लिटिल फिलोसॉफिकल। इंसान को अगले पल का नहीं पता, हम और तुम कौन होते हैं सलमा बेगम, अगले हफ्ते की बात करने के लिए।
0: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
1: और मैं एक और भी बात कहना चाहूंगी, आज के दिन में बड़े सारे लोगों ने मेरे को ये बोला है कि भाई साहब क्या बात है, आज ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम क्यों चल रहा है यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर, वो भी थर्सडे शाम को। ओढ़े हुए है चादर टॉप चार्ट्स की और चल रहा है बीच में भक्ति संगीत। हाँ तो भाई पहले घंटे में बहुत सारा भक्ति संगीत हुआ, ये मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तो मैंने पूरा फोकस करके यहाँ पर हाथ जोड़ के कहा कि भाई आज का मेरा शो अच्छे से हो जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भक्ति संगीत आना थोड़ा हुआ कम, लेकिन आप जानते हैं कि क्या साजिश थी, मेरे साथ में आज के, कि भाई हनुमान अंश का जो पार्वती गाना है वो नंबर एक पर डाला गया था, नंबर एक। मैंने आके सवाल पूछे 1, 2, 3, 4 की, भाई किसका दिल इतना भारी हुआ पड़ा है कि आज के दिन में नंबर एक पर पार्वती जी का मतलब गाना डाला गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया बहन। तो फिर मेरे को कोई जवाब ना दे पाया एंड फाइनली I said, okay, now I am taking over. And yes, ladies and gentlemen, I have taken over the Masti Top Charts and I am delighted to bring to you Gana number 7.
2: Tum kya ho kaise kahun, tum sub ho ki shaan.
1: Hai, kya gana hai vise, Tabassum, Batwara 1947 ka ye gana, oye hoye, oye hoye.
2: Tum rango mein khushbuo mein dhali hoon, tum ho chaman.
1: सारा गाना सुन लो ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही सुन लो सारा गाना, तुम बाद में मत सुनना। बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस राइट नाउ आई गॉट टू टेल यू दैट मेरे स्टूडियो में ना छोटे छोटे कुछ मच्छर हो रहे हैं। तो आज मैनेजमेंट वालों को मैंने कहा, मैं क्या बात है भाई, ये मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्यों हो रहे हैं ये। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा जो साथ में ऑफिस है ना वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा दैट डजंट मेक थिंग्स राइट ना, कि अगर उनके ज़्यादा है मेरे कम है तो मैं क्या खुश हूँ इस बात से, कहाँ से आ रहे हैं ये मच्छर। तो कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया है, आप मुझे कुछ एडवाइस दे पाएंगे तो जरूर बताएगा। 9151896 दैट्स अ टेलीफोन नंबर, सेंड मी अ टेक्स्ट गाइस। ये छोटे छोटे छोटे छोटे मच्छर, मतलब दो चार ही हैं, बट दे इरिटेटिंग द हेल आउट ऑफ मी राइट नाउ।
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 7।

आप जानते हैं कि तबस्सुम का क्या मतलब होता है? It means smile or happiness. How amazing is that, right? Radio Masti 24/7 पर आप जो भी गाना सुन रहे थे उसका भी एक बड़ा ही खास कहानी है. You know, this song is actually marked the major reunion of दो maestros. जी हाँ, composed, produced and arranged by Oscar winner A.R. Rahman. और साथ ही में जो lyrics हैं वो लिखे हैं हमारे legendary जावेद अख्तर साहब ने. तो आप सोच

0: जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं।
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था।
0: One ancient warning.
2: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, उन सबका मतलब क्या है?
0: And then there is a man who crosses the boundary.
3: हमें चिंता नहीं उनकी।
0: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
3: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है।
0: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
4: Trending song number 6.

आई कैन नॉट इमेजिन कि हम एकदम से सब्जी मार्केट पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, 7:11 पर आपको आलू कांदा लेना है तो यही है सही जगह। दिस इज मस्ती मीडिया 24/7 एब्सोल्युटली लाइव इज रेणुका विद यू। और जिम के जो लोग पिछले गाने में सो गए थे, लेट गए थे ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके, वो अब उठ के काम अपना दोबारा से शुरू।

गाइस और वेलकम। जी हाँ, कि मैं आज इतना बढ़िया शो यहाँ पर कर रही हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन एक और चीज के लिए वेलकम करना चाहूंगी आपको अगले हफ्ते। मैं ये सोच रही हूँ कि भाई इतने टाइम से हमने कुछ नया नहीं किया है ना भाई, किया तो नहीं है नया, तो क्यों ना हम वो बात बता दें आपको जो हम करने में लगे हुए हैं। एक हमारा खास नया पॉडकास्ट शुरू हो रहा है, जी हाँ, विच इज कॉल्ड बिहाइंड द सक्सेस।

विद रेणुका, और उसका आप रिवील देख सकते हैं 1 अक्टूबर को. आफ्टर ऑल 1 अक्टूबर हमारे लिए आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है. सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोगों का इतना प्यार 1 अक्टूबर को हमें 10 साल पहले मिला था, और आपकी डेफिनेटली ब्लेसिंग्स थी जिसकी वजह से आज तक हम यहाँ पर टिके हुए हैं, जमे हुए हैं. जी हाँ, तो बस 1 अक्टूबर को आप देखेंगे ये जो नया हमारा पॉडकास्ट है उसका एक छोटा सा झलक, और फिर उसके बाद हर थर्सडे को फॉलोइंग 1 अक्टूबर आप एपिसोड्स नए देख पाएंगे. तो आई होप आप हमारे साथ जुड़ेंगे, बिकॉज दीज आर ऑल स्टोरीज ऑफ रियल पीपल, जो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिंदगी में एक ना एक ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट को लात मार के उन्होंने प्रूव किया है दैट दे आर बिगर देन एनी प्रॉब्लम एंड दे आर अबव इट ऑल. मतलब बड़ा अच्छा लगता है ऐसी इंस्पायरिंग वाले लोगों से मिलकर यार, बड़ी हिम्मत आ जाती है, और आई एम श्योर आप भी एंजॉय करेंगे उनके रियल स्टोरीज. एंड ऑफकोर्स आई विल लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ऑल्सो. ऑल राइट, सो जरूर देखिएगा बिहाइंड द सक्सेस विद रेणुका स्टार्टिंग 1 अक्टूबर, एंड एवरी थर्सडे देर विल बी अ न्यू एपिसोड. देखना, और मुझे जरा कॉन्ग्रेचुलेट भी कर ही देना इस बात पे, ठीक है ना. अगला गाना कमिंग अप टू मेक यू रिलैक्स ऑन द ट्रेडमिल yet again. Yeah! Bollywood Flashback.

यार ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन करता है हमेशा अच्छे अच्छे गाने सुनने का, और हम सुनते भी हैं, लेकिन जब एन वक्त पे गाना याद करना होता है तो भूल जाते हैं सारे के सारे अच्छे गाने। इसलिए आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ यार, बीच में फिलर के लिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, अच्छा सा बताइए जरा यहाँ पर।

0: मतलब इस गाने को सुन के ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा रोमांटिक कोई इंसान हो सकता है? कोई इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है? ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहा होगा. हमें पता है बीवी के लिए कोई ऐसी बातें नहीं बोलता, हम सब जानते हैं ना.
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
0: जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, बीवियों के लिए तो ये बोला जाता है, अब छोड़ मेरी जान है ना. रेडियो मस्ती 24/7 पर रेणुका विद यू. जी बड़े दिन हो गए आप लोगों को शाम को मिले हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि उफ, मतलब अब तो आज दिल भर के बातें करी जाए. तो मेरे को बुराई करनी है अगली वाली, वो है राधिका आप्टे की. ठीक है, लड़की करती भी सब कुछ है, उसको अटेंशन भी पूरी चाहिए और फिर ना छुई मुई बनने की कोशिश भी पूरी करती है. मतलब सीरियसली, दिस इज लाइक मोहल्ले वाली आंटी टॉकिंग अबाउट द डॉटर ऑफ द पड़ोसी. ओके, दैट इज हाउ आई एम टॉकिंग राइट नाउ. सो राधिका आप्टे क्या हुआ कि रिसेंटली कहती है, हाय राम, मेरा ना इंटीमेट सीन लीक हो गया मेरी एक फिल्म से और फिर ना मेरे वॉचमैन ने भी देख लिया, मैं तो 4 दिन घर से बाहर नहीं निकली. एक मिनट, इसमें मेरे पास ना बहुत सारे सवाल है. पहली बात ये, इंटीमेट सीन तुमने किया, अपनी मर्जी से किया, तुम्हें पता था इंटीमेट सीन करना है. ठीक है, लस्ट स्टोरीज 3 जैसी फिल्म में जब तुम आओगी, उसके नाम क्या है, लस्ट. हमने पहले 2 सीजन देखे हैं, हमें पता है उसमें क्या होता है और तुम्हें भी पता ही होगा बहन, है ना. तो तुम जब उसमें आई तो तुम्हें पता था इंटीमेट सीन होंगे, इंटीमेट सीन होंगे तो बाहर जाके देखेंगे भी, और देखेंगे तो उसमें वॉचमैन भी देखेगा, आफ्टरऑल वॉचमैन के पास भी नेटफ्लिक्स होगा, उसके पास भी सब कुछ होगा, है ना. तो देखा उसने भी, तो तुम बहन किस बात पे शर्माती हो, सकुचाती हो, क्योंकि तुमने तो अपनी मर्जी से किया है वो सब कुछ. ओ माई गॉड, शी वेंट ऑन टू से कि भाई मैंने ना जो ऐसा किया वो लीक हो गया, लिटरली मैं तो घर से बाहर ही निकल पाई 4 दिन. प्रॉब्लम इज कि मैं ना, कि वो इतनी जल्दी घर आ गया, डोरबेल बज सकती है, तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा हो सकता है अगर वो ऑफेंडेड फील करे. इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मैं ना ओके, कहती है, माय स्टाइलिस्ट वाज टेलिंग मी कि जो उसका ड्राइवर है ना, वो ना उस क्लिप को देखता ही रहा और कहने लगा कि आप उनके घर नहीं जा रहे हो. मतलब सीरियसली राधिका आप्टे, मैंने भी देखी है लव स्टोरीज, ठीक है, और मुझे ज़रा इंटरेस्ट नहीं आया तुम्हारे वो सारे सीन्स में, लेट मी टेल यू दैट. फिलहाल के लिए अगला गाना यहाँ पर है, गाना नंबर 5. एंड प्लीज, आई डू नॉट रिकमेंड एनीवन वॉचेस लव स्टोरीज 3 बाय द वे. चुप चुप के आप लोग जरूर देखोगे, बताओगे नहीं, है ना. गुड इवनिंग एवरीवन.
2: Trending song number 5.

और ये गाना स्पेशली आदित्य तुम्हारे लिए, आई नो यू लव दिस गाना एंड यू ऑलवेज वांट टू सी इट ऑन टॉप नंबर वन, लेकिन हमेशा तो हमारे पास वही चीज नहीं होती ना यार जिंदगी में, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, आएगा वापस आएगा नंबर वन पर, आई प्रोमिस यू।

0: मानती, मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान अगर ये गाना अपने लिए किसी और को गाते हुए सुने तो वो मतलब वो शर्माएगा नहीं, या वो इमोशनल नहीं हो जाएगा, या वो बोलेगा छोड़ यार सारी दुनिया गई भाड़ में, ये मेरे लिए गाना तो गा रहा है। आपको पता है हाल ही में मेरी एक फ्रेंड, बाय द वे, उसका डिवोर्स हुआ और उसको मतलब काफ़ी साल से परेशान थी वो, ठीक है। तो उसमें उसने जब डिवोर्स किया अपने हस्बैंड को, उसने कहा अब मेरी जान छूट गई, तो उसने जाकर एक डेटिंग ऐप को ज्वाइन कर लिया भाई कि ठीक है वाई नॉट। डेटिंग ऐप को ज्वाइन किया तो वहाँ पर एक बंदा भी उसको मिल गया बहुत जल्दी से, जो कि उसके प्रीटी मच बराबर का एज एंड यू नो व्हाटएवर सब कुछ। तो वो बंदा उसके लिए शेर व शायरी लिख रहा, रोज़ रोज लिख रहा उसके लिए शेर व शायरी। बंदी बिल्कुल सेंटी हो रही, कह रही है मैं 20-25 साल, मेरी शादी हुई थी और मैं इस शादी में रही थी 20-25 साल और मैं इतनी पक गई थी उस आदमी से कि अब और कुछ हो ना हो एटलीस्ट ये आदमी मेरे लिए शेर व शायरी तो लिखता है। प्यार का भूखा होता है इंसान सर, प्यार का भूखा होता है सिर्फ।
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
0: आज तो मेरे मतलब मुंह से सिर्फ और सिर्फ पर्ल्स ऑफ एक्सपीरियंस और विजडम निकल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी अभी जब हम बात कर रहे थे राधिका आप्टे की, तो सबको यही लगा कि ये राधिका आप्टे प्लीज कौन है, ये क्यों हम इतना इसको भाव दे रहे हैं, कौन देख रहा है इसके लस्ट भरे सीन और किसको फर्क पड़ रहा है सीरियसली। तो हमारे कुछ सुनने वालों का ये कहना है कि भाई आजकल ऐसी फिल्मों को देख के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर है। तो चलिए आप ही लिख दीजिए किताब, मतलब व्हाई नॉट। और कुछ लोगों का ये कहना है कि छोड़ यार इसकी शक्ल को, रहने देना, हु इज इंटरेस्टेड एनीवे। सो विद दैट, प्रतीक गांधी की बात मैं करना चाहती हूँ आपके साथ, क्योंकि क्या है कि जब हाल ही में कैटरीना कैफ बाहर निकली थी अपने हस्बैंड के साथ में, एंड दिस इज पोस्टमार्टम राइट, सो शी इज पुट ऑन सम वेट एंड ऑल दैट, एंड आपको पता है कि पीपल हैव दिस सर्टन वे ऑफ लुकिंग एट वुमन, एंड वो कहते हैं कि भाई ये तो हीरोइन है, इसको मोटे होने का क्या हक बनता है, इसको तो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसे ये 10 साल पहले थी। यार मतलब शी इज एंजॉइंग मदरहुड, लीव हर अलोन। लेकिन कुछ लोग उनके लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा कैटरीना कैफ को, इंक्लूडिंग सलमान खान। ही सर मैं अपनी शर्ट उतार देता हूं, मेरे को कमेंट करो। भाई तेरे को कमेंट करने का किसको इंटरेस्ट है, बट एनीवे ही ट्राइड। वो वैसे भी बात बात पर शर्ट उतारना का ही जस्ट वेट्स ना कि मैं उतारूं तो सही, कोई देखे तो सही। उसी टाइम पर प्रतीक गांधी ने बोलना शुरू कर दिया, वो कहता है भाई मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं अमीर लगता नहीं हूं, मैं शक्ल से गरीब लगता हूं, इसीलिए मुझे हमेशा जब भी मैं ऑडिशंस के लिए गया हूं टेलीविजन शोज पे या कभी फिल्मों के लिए, हमेशा रिच दिखने वाले एक्टर्स को अमीर रोल मिल जाते हैं और मुझे सारे गरीब वाले अजीब अजीब से रोल मिलते हैं। देखा मैंने कहा ना, दुनिया में बहुत दुख है, बहुत दुख है, इसीलिए आपको जाना चाहिए इस सैटरडे को इस इवेंट पर।
2: सैटरडे नाइट का प्लान, पार्टी, कॉन्सर्ट या फिर भजन बैठक, जिनकी भजन बैठक में हजारों लोगों को एक साथ गाने सेलिब्रेट करने का एक नया एक्सपीरियंस दिया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, अब वो आ रहे हैं सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स राघव एंड प्राची, गाएंगे वो, गाएंगे आप, सोलफुल भजन से सूफी और नॉस्टैल्जिक फेवरेट्स तक। 26 सितंबर, एंगेज थिएटर 2, सनटेक सिंगापुर। भजन जैमिंग विद बैकस्टेज सिबलिंग्स, टिकट्स ऑन सिस्टिक, बुक नाउ। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 9866-7144।
3: इट्स अ मस्ती पार्टनर इवेंट,
4: इट्स टाइम फॉर
5: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: बिल्कुल, फिर वही रात है, फिर वही शाम है, फिर वही थर्सडे है, लेकिन आज का थर्सडे थोड़ा सा अलग है क्योंकि भाई आज के थर्सडे में मैं आई हूँ आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की, लेकिन आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमें इंतजार है सिर्फ एक ऐसी फिल्म का जो कि बहुत टाइम के बाद आने वाली है, एंड यू नो व्हाट आई मीन एंड आई नो व्हाट आई मीन, एंड दैट इज द फिल्म दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, एंड वो आएगी कब, जिस दिन हम और आप जाएंगे पाव भाजी खाने।
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
0: बात कर रही हूँ मैं दृश्यम 3 की। जी हाँ, 2 अक्टूबर को आप और हम सब के सब बिल्कुल पाव भाजी खाने जाएंगे क्योंकि वही आदत हमें पड़ी हुई है पिछले 2 सीजन से, राइट। तो अब ऐसा है कि बात हो रही थी दृश्यम 3 की हाल ही में, एंड जो डायरेक्टर है अभिषेक पाठक, उन्होंने ये कहा कि भाई ही वॉज अंडर इमेंस प्रेशर क्योंकि सडनली अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद में ही जस्ट एग्जिटेड दृश्यम 3, राइट, एंड देयरफॉर लिखना पड़ा एक पार्ट दोबारा से और कुछ कुछ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जस्ट डेज बिफोर द शूट। नाउ यू कैन इमेजिन अक्षय खन्ना हु वॉज प्लेइंग IG तरुण अहलावत दृश्यम 2 में, ही वॉकड आउट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पॉपुलर फ्रेंचाइज 7 दिन, जस्ट 7 डेज बिफोर द शूट वॉज स्केड्यूल टू कमेंस, और उसके बाद में जयदीप अहलावत को लाया गया। आई एम सो ग्लैड जयदीप अहलावत को लाया गया बिकॉज फॉर सम रीजन आई डोंट नो आई एम नॉट इन लव विद अक्षय खन्ना बिकॉज ऑल्सो वेन ही वॉज इन सिंगापुर कुछ साल पहले ही सेड अरे यार जब हम FM पे हुआ करते थे उस टाइम पर ही वॉज इन सिंगापुर एंड यू नो फॉर सम रीजन गॉड फॉर सेकंड रीजन ही सेड नहीं मुझे रेडियो पर इंटरव्यू नहीं करना। तो मैंने उस दिन से सोच लिया कि मुझे भी नहीं करना इसके साथ कुछ, ठीक है ना। एनीवे, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि ये जो खन्ना का एग्जिट है ना उसकी वजह से पूरा हिल गया सब कुछ और बहुत काम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो ऐसे होता है ना कि भाई उनको और भी बहुत काम करने पड़ते हैं, सो उनको शूट पुश करने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर का भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड ऑल दैट, सो देयर वाज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। बट अगेन एट द सेम टाइम ही सेड कोई नहीं, हो गया सारा का सारा काम और अब फिल्म बिल्कुल तैयार है और होने वाली है रिलीज बहुत ही जल्दी। एंड दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल चैप्टर अनफॉर्चुनेटली ऑफ दिस अजय देवगन लेड थ्रिलर फ्रेंचाइज। एंड अहलावत जो है इसमें SP क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह टोमर बन के आ रहे हैं, हु गोज आफ्टर विजय सलगांवकर एंड हिज फैमिली। वैसे बिटवीन यू एंड आई, जो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने ना ओरिजिनल वाली दृश्यम देख ली है। बताऊं क्या होता है उसमें ना पता है कौन निकलता है?
2: Trending song number 4.

0: Cheer up guys, this is Renuka with you, Radio Masti 24/7 पर. जी हाँ, बस हमारे और आपके बीच में रह गए हैं अराउंड 18 मिनट इस टाइम पर. एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू प्रेजेंट यू द लास्ट थ्री गानास. जी हाँ, द टॉप थ्री गानास अगर मैं कह सकती हूँ उनको. तो आपको अभी तक समझ में आई कि कौन सा गाना नंबर वन पे होने वाला है? वेल, अगर आ गया है, पता लग गया है, तो मुझे जरूर भेज दीजिए 9151896 3. लेट्स सी इफ योर चॉइस एंड योर स्टाइल मैचेस मस्ती स्टाइल. देखते हैं, जल्दी भेजो.
1: उन पेड़ों पर किसी काली अनजानी शक्ति का पहरा था.
2: कुछ जंगलों में सिर्फ राज नहीं, शक्तियाँ भी बसती हैं.
1: प्रवेश वर्जित है, उसकी चौखट पर यही लिखा था.
2: One ancient warning.
3: ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है?
2: And then there is a man who crosses the boundary.
4: हमें चिंता नहीं उनकी.
2: Watch Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in The One, Force of the Forest.
4: हमारी रक्षक है वो, जिनकी शेर सवारी है.
2: Brought to you by Vision Discs Singapore, releasing island wide on 25th September at the cinemas near you.
5: Healthy khao, protein khao.
6: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. Shaam ki chai ho, office ka break ho, ya late night binge watching.
5: Healthy khao, protein khao.
6: Healthy munching ka perfect partner. Aap sirf ek click door.
7: GT.
6: Crushable nuts only on GTmartonline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana. और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस.
7: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.
8: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे.
0: जी बिल्कुल, और इस पर देसी स्टेशन पर देसी वे से कॉन्टैक्ट करने के लिए एब्सोल्युटली यू नो हाउ टू फाइंड अस 9151896 3. एंड इन केस यू आर नॉट लिसनिंग टू अस फ्रॉम आर ऐप, तो फिर समझ जाइए बड़े सारे फीचर्स आप बिल्कुल मिस कर रहे हैं, इसलिए डाउनलोड कीजिए मस्ती मीडिया 24/7. हेलो, गुड इवनिंग. और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर टॉप के तीन गाने आपका इंतजार कर रहे हैं. उन तीन गानों में से कौन सा लड़ मर के एक दूसरे की गर्दन दबा के नंबर वन पे पहुंचेगा, ये मुझे नहीं पता. एंड वाकई मुझे नहीं पता. आई जस्ट एम गोइंग टू प्ले थ्री सॉन्ग्स हियर एंड आई एम ब्लाइंड विद द फैक्ट कि आज कौन सा वाला नंबर वन पे होने वाला है. लेट्स सी. इम्तियाज अली, मैं वापस आऊंगा. और वो आएगा वापस, लेकिन फिलहाल अपनी बेटी की एंगेजमेंट के साथ में काफी बिजी हैं. और कमिंग अप एक दूसरा गाना,
9: गुलाबी साड़ी अने लाली लाल लाल, सुनने में भारी राजा फोटो मजा का.
0: हाय हाय धमाल. Cocktail 2 का soundtrack ये वाला. So well, we've got मैं वापस आऊंगा, we've got धमाल 4 and we've got Cocktail 2. कौन सा गाना होने वाला नंबर एक पर, ये मुझे आप बताएंगे लिख के फटाफट. We are बस ready to play all three गानास for you right away. और ये गाने चलते चलते मैं यहाँ से पतली गली से निकल जाऊंगी, बट नहीं, फिलहाल नहीं, अभी यही हूँ.
10: Trending song number 3.

course, आप सुन रहे हैं गाना नंबर 3 so now we left with just 2 songs guys, one from मैं वापस आऊंगा and the other one from cocktail 2, which one is going to be गाना नंबर 1, मुझे जवाब आने शुरू हो चुके हैं but

0: Alright, it is time for me to say goodbye, guys. 7:52 यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर कर रहे हैं कुछ मेरे दोस्त मेरा इंतजार आज शाम को मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत बिजी हूँ विद ऑल द इवेंट्स. सो आई एम गोना टेक योर लीव गाइज एंड आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून. मंडे सुबह तो मिलूंगी बट फिलहाल के लिए और भी सोच रही हूँ अगले हफ्ते कब मिल सकती हूँ. लेकिन यू स्टे गुड, यू स्टे वेल एंड यू स्टे स्माइलिंग. ऑलराइट, तब बस सुम बन के रहना, हैप्पी. मतलब याद है ना मैंने सिखाया था आज के शो पे. रह गए दो गाने, देखते कौन सा नंबर वन फिलहाल के लिए चला रही हूँ पर गाना नंबर दो. एंड ऑफ कोर्स गिविंग यू लॉट्स ऑफ मुआज एंड टू मेक श्योर दैट यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. रिमेंबर टू स्माइल, स्माइल इज द सेकंड बेस्ट थिंग यू कैन डू विद योर लिप्स. बाय.
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 2.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: The perfect recipe for you to unwind. मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7. Josh me raho.
2: The perfect recipe for you to unwind. Masti Weekends only on Radio Masti 24/7 Live.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: Don't miss exciting offers on healthy snacks and Crushable premium nuts at Velocity Novena Square, kiosk number 12, 11th to 25th September. शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ,
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: Crushable nuts only on GTMartOnline.com. Premium cashews, California almonds, pistachios, pumpkin seeds, makhana, aur bhi bahut sare wholesome healthy options.
2: GTMart, your personal grocer.
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो

कल्चरल सोसाइटी का एक ग्रुप बाहर जा रहा है, आप लोगों में से जो साहिबान हिस्सा लेना चाहें वो अपने अपने हाथ उठाएं।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम्ही हो नादनी, वो तुम्ही हो महजबी, एक लड़की है जिसने जीना

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: मैं तुझे प्यार

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

काले गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके राज पते, देख के किसको सुभा हसे। चलो कौन कौन कौन कौन कौन, कौन?

ख्वाबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

0: की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: हर जन्म भव बीजानां आर्जनम्।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: भाई हमने तो हमेशा से ही कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार का इरादा है, और आप ही लोग हैं जो आगे आगे भाग रहे हैं, हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग।
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
0: जी बिल्कुल, मस्ती जिंदगी में रहनी चाहिए, चाहे और कुछ हो या ना हो। यस और यस। वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ बिल्कुल, मंडे की शुरुआत है और मंडे की शुरुआत में सिर्फ एक ही आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए और वो है रेणुका की, राइट। सो भाई रेणुका बिल्कुल आ चुकी है और सितंबर के महीने का आखिरी हफ्ता, जी हाँ आखिरी कह लीजिए कि 3 दिन रह गए हैं, और फिर उसके बाद आएगा वो वाला महीना जो कि मैं तो कहती हूँ साल में सबसे बढ़िया महीना होता है, अक्टूबर का। अब क्यों मैं ये कहती हूँ ये आप लोगों को पता लग जाएगा 15-18 दिनों में। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 बात मेरी नहीं, बात हो रही है आज दुनिया भर की। जी हाँ, मंडे सुबह का टाइम होता है जब हम बात करते हैं अबाउट द न्यूज एंड द व्यूज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड वही लेकर मैं आपके लिए आई हूँ एब्सोल्युटली इंफोटेनिंग शो विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग शो। और मॉर्निंग शो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक ऐसे गाने के साथ में जो है बिल्कुल शुद्ध, जो है बिल्कुल देसी और जो है रोमांटिक। शुद्ध देसी देसी देसी रोमांस वही करेंगे हम लोग साथ साथ में। लेकिन जैसा आप जानते हैं मैं मंडे की शुरुआत करती हूँ हमेशा आपके लिए एक खास बात के साथ, और वो बात होती है बड़ी पॉजिटिव जो आने वाले हफ्ते के लिए आपको रखती है तरोताजा। सो आज सुबह की क्या बात है? वेल मैं कहूंगी जिंदगी जो है ना उसको एक कैमरे की तरह ट्रीट कीजिए आप। जी हाँ, लाइफ इज लाइक अ कैमरा। फोकस कीजिए ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट, कैप्चर कीजिए सिर्फ अच्छा टाइम, द गुड टाइम्स, एंड डेवलप फ्रॉम द नेगेटिव्स, एंड इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट टेक अनदर शॉट यार, है ना। और आजकल तो डेवलप भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिलीट एंड टेक अनदर शॉट। गुड मॉर्निंग।

आज हम शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबर के साथ। जी हाँ, सिंगापुर में सबसे बढ़िया खबर ये है कि एक बहुत ही मुश्किल सैटरडे के पास, जहां पर इस इंसान ने देखा

0: और बस ये जो ऑब्स्टिकल है जो कि अगले दिन लो को फेस करने वाला था इन द एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल्स वाज इंडोनेशियन वर्ल्ड नंबर वन जोनाथन क्रिस्टी, जो एक ऐसे ओपोनेंट है जो उन्होंने कभी भी नहीं हराया था पहले। सो वेल एट द इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिमनेजियम, जी हाँ, कल के दिन में हमारे सिंगापुरियन प्लेयर ने स्नैप किया 10 मैच विनलेस स्ट्रीक, गारंटिंग सिंगापुर अ हिस्टोरिक मेंस सिंगल्स मेडल इन बैडमिंटन। लो इस समय 13th रैंक करते हैं द वर्ल्ड। ही बीट क्रिस्टी 21-14, 21-19 टू बुक हिज प्लेस इन द सेमीफाइनल्स एंड सिंगापुर का एक बैडमिंटन का मेडल, जी हाँ, हैज बीन द वुमेन्स टीम ब्रॉन्ज एट द 2006 दोहा गेम्स, और अब लग रहा है कि मेंस कैटेगरी में आने ही वाला है। वेल ही सेड, मैं सिर्फ ट्राई करता हूँ टू स्टे कंसिस्टेंट और उसके अलावा फोकस करते रहो, बस और क्या चाहिए, यही तो है। लेकिन अभी अभी आराम नहीं, क्योंकि अभी अगला मैच जो कि होने वाला है आज के दिन, जी हाँ, मंडे के दिन में होने वाला है ये वाला मैच, और अब हमें ये देखना है कि इज ही गोइंग टू बी, हाउ इज ही गोइंग टू परफॉर्म। वेल Let's hope for the best, guys, ताकि हम आपको आज शाम को एक और भी बढ़िया खबर दे सके, right? फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे और कहते हैं कि भाई जितनी भी तारीफ करी जाए कम है ना?
1: तारीफों से नहीं तू मानने वाली।
0: Good morning once again. This is the morning show with Renuka.

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू

0: आइए बढ़ते हैं आगे। हम तो कह रहे हैं यहाँ मरने मरने की बातें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जीने की बात होगी। यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर बात होगी अगली खबर की। और अगली खबर कहाँ से है? वेल, चलिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स लेके चलते हैं। मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर The Morning Show. मैं और इनुका आपके साथ, this is मस्ती मीडिया 24/7। जी हाँ, हमारा रेडियो मस्ती 24/7 जो कि इस समय नए ऐप के नाम से आप तक पहुंच रहा है 24 घंटे सातों दिन। So, well, US President Donald Trump और Chinese Premier Xi Jinping, इन दोनों ने ही बात करी Middle East War की at their summit last week जो हुआ, as Iran pressed Washington to accept a 7-day plan to reopen the Strait of Hormuz and halt regional fighting. चाइना जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन द फ्लो ऑफ मिडल ईस्टर्न ऑयल, हैज बीन डिस्ट्रप्टेड बाय इरानियन थ्रेट्स ऑन टैंकर्स लीविंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड द एडवांस ऑफ इरानियन एलाइड हौथीस अलोंग चोक पॉइंट्स इन द रेड सी। शी ने अर्ज किया है यूएस और ईरान को टू रिटर्न टू द जून फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दैट लेड टू द शॉर्ट लिव्ड सीज फायर एंड कंटिन्यू नेगोसिएशंस टुवर्ड्स अ ब्रॉडर सेटलमेंट, अकॉर्डिंग टू चाइना स्टेट न्यूज एजेंसी। ट्रंप ने ये कहा है कि भाई मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल भी अगर आपने सपोर्ट दिया ईरान को, चाइना को ये कहा, एंड रिसीव्ड अश्योरेंसेस दैट चाइना वुड नॉट डू सो। एंड द यूएस एम्बेसडर टू चाइना सेड लास्ट वीक द फाइनल डे ऑफ शीज 3-डे स्टेट विजिट। The flurry of diplomacy underscored the global stakes of the 7-month-old conflict, which has disrupted oil flows through one of the world's most critical shipping lanes and drawn in regional and world powers. Xi ka jo visit hai, it coincided with the UN General Assembly, jahan par Iran aur US engage kar rahe hain aapas mein in diplomacy through Qatari mediators. Iran ne of course welcome kiya hai Xi ke push ko for a return to the June framework, but also placed renewed emphasis on its peace proposal formally unveiled on September 24th. Well, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ, 7 महीने से वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में, और कहीं दूर दूर तक इस समय समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाकर ये बात रुकेगी। जाने क्यों लोग प्यार करते, यहाँ तो जाने क्यों लोग लड़ाई करते हैं, किसी पे मरते। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग,
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: वापस आ गए आप. ओए ओए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. रेडियो मस्ती 24/7 पर आपके साथ है रेणुका, एंड ऑफ कोर्स चल रहा है हमारा द मॉर्निंग शो. सीरियस हेडलाइंस विद अ नॉट सो सीरियस वाइब ओनली ऑन द मॉर्निंग. सीरियस बातें बहुत होगी सुबह से, आप जानते हैं, हर घंटे एक बार मैं बॉलीवुड की बात जरूर करती हूँ. तो चलिए इस बार बॉलीवुड की बात करते हैं और वन की बात करते हैं, द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट. इसमें इतने सारे व व व व र र र र पता नहीं क्यों हैं, लेकिन खैर होगा कुछ न्यूमरोलॉजी कुछ तो होगा, बिकॉज द फिल्म इज कॉल्ड द VVAAN वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट FORRESTE. सो भाई ऐसा लग रहा है बड़ी सारी रिपीटेशन आ रहे हैं, चाहे कहीं सही है कहीं नहीं है. वेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ये वाली फिल्म इस समय पहुंच चुकी है 11 करोड़ नेट इंडिया. सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही दिन की बात हो रही है, उसके बाद तीसरा दिन आ चुका है जिसके नंबर्स अभी नहीं आए हैं. पहले दिन 8 करोड़ नेट कमाया. Well, the film registered 37.5% increase अपने daily collection में दो ही दिन में, and I was not sure ये film कैसे करेगी, but seems like the numbers are quite good. 19 करोड़, जी हाँ, पहले ही दिन ये बात कमाने के बाद में लगा कि अगले दिन क्या होगा, लेकिन अगले दिन जब बढ़ता है, that means the word of mouth is pretty good. The film also added more shows Saturday को, जो कि अपना opening day के अगले दिन, and the show count 6746 theaters से 6887 हो चुका था. सिर्फ भारत की बात कर रही हूँ मैं इस समय. और फिल्म का जो 2D version है, it recorded an overall occupancy of 38.5% only on day 2, and the film's morning shows registered 16.54, जो कि काफी ज्यादा माने जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह इतने लोग नहीं आते, लेकिन शाम तक 40% तक भर चुका था occupancy. Night में इनफैक्ट 55% तक पहुंची. इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दीपक कुमार मिश्रा ने. वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट फीचर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, जैसे कि मैंने कहा, साथ ही में है अनूप सोनी, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी एंड मनीष पॉल. इस फिल्म में आप देखेंगे फैंटेसी, फोकलोर एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, और उसकी जो स्टोरी है, इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ फॉरबिडन फॉरेस्ट और माँ वन देवी के मंदिर के आसपास ये वाली सारी सारी फिल्म. वेल, आई एम नॉट टू श्योर कैसी है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अगला गाना मैंने जरूर देखा है. सुना साथ में. I'll see you right after this.
1: Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: डोंट मिस एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन हेल्दी स्नैक्स एंड क्रिशिबल प्रीमियम नट्स एट वेलोसिटी नोवीना स्क्वायर कियोस्क नंबर 12, 11th to 25th September। शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
1: क्रिशिबल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस।
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं मेरे साथ रेणुका के साथ ऑन द मॉर्निंग शो। एंड मॉर्निंग शो पर हम क्या करते हैं, कल खबरें होती है ना देश विदेश की, भूल गए आप? The only show actually that brings the news from across the world right at your fingertips, ताकि आप आगे के लिए total ready हो जाएं। इस हफ्ते के लिए intelligent वाला show है ये, right? Remember. But I'm going to quickly tell you an update coming from Beijing yet again. China ने भेजे हैं 2 giant pandas to the United States. जी हाँ, कल ही के दिन की ये बात है, after a Washington summit that was heavy on symbolism and light on major breakthroughs. ये जो पैंडास का ट्रांसफर है, दैट हैज ऑलरेडी बीन अग्रीड, बट द डिपार्चर जो कि अनाउंस किया गया पिछले हफ्ते थर्सडे को ड्यूरिंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स विजिट टू वॉशिंगटन। ब्लैक एंड व्हाइट ये जो हमारे पैंडास होते हैं, दे आर इमेंसली पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड चाइना जो है वो लोन आउट करते हैं पैंडास को एज अ पार्ट ऑफ पैंडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम टू फॉस्टर फॉरेन टाइज। पिंग पिंग एंड फू शुआंग, जी हाँ, ये दोनों नाम हैं जो कि चेंगडू शुआंगलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट पर गए कल ही के दिन में, अबाउट 3 AM, एंड उसके बाद में स्टीम्ड कॉर्न बंस, बैम्बू शूट्स, कैरेट्स, ये सारे के सारे तैयार किए गए उनके लिए। 15 घंटे की फ्लाइट है भाई, छोटी बात तो नहीं है। The Boeing 777 operated by FedEx and उसके बाद top tracked aircraft रहा ये on aviation information platform Flight Radar 24 जैसे ही वो पहुंचा अलास्का, which is roughly halfway into its journey। और जो पैंडास हैं वो पहुंचेंगे जू में इन अटलांटा जॉर्जिया, जहां पे दे विल बी स्पेंडिंग द नेक्स्ट 10 years। एक फेयरवेल सेरेमनी, जी हाँ, दैट वॉज हेल्ड फॉर द पेयर बिफोर द डिपार्चर बाय द चेंगडू रिसर्च बेस ऑफ जायंट पैंडा ब्रीडिंग। बहुत ही क्यूट ये पैंडास जो कि समय पहुंच गए होंगे इनफैक्ट, और एक्सपीरियंस जो कीपर्स हैं उनको भी साथ में भेजा गया US की तरफ से टू कंपनी द डुओ ऑन देयर फ्लाइट एंड प्रिपरेशन फॉर देयर अराइवल। जू अटलांटा ने रेनोवेट किया है पैंडा फैसिलिटीज एंड असेंबल्ड टीम ऑफ एनिमल केयरटेकर्स। वेल, देखते हैं इनकी क्या खबरें आती रहती है, कैसा रहा इनका। और भाई, मेरे वाला जेट लैग है तो इस समय तक तो सो ही रहे होंगे, पक्की बात है। गुड मॉर्निंग, आई विल सी यू नेक्स्ट आवर गाइस। चीयर अप, दिस इज रेणुका विद यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live.

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: वेलकम टू द सेकंड आवर रेडियो मस्ती 24/7 पर. जी हाँ, रेणुका आपके साथ सुबह 7 बजे से है. एंड ऑफकोर्स हमारे शो का नाम है द मॉर्निंग शो. मंडे सुबह का ये हमारा शो आपके लिए लेकर आता है खबरें. जी हाँ, मैं सिलेक्टिवली सारी खबरें आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आप फ्यूचर रेडी हो सके. और बात करें फ्यूचर रेडी की, तो AI को कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम. Well, as the US and China accelerate their AI push, क्या बहुत लेट हो चुका है फॉर अ सेफ्टी पॉज, या क्या होगा अगर इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड्स और स्टैंडर्ड्स नहीं रखेंगे. सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विविन बालकृष्णन ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच पर इस बारे में बात करी. We must collectively formulate new rules and be prepared to create new institutions if necessary for new technologies, aisa kaha Mr. Vivian Balakrishnan ne while delivering Singapore's national statement at the general debate of the UN General Assembly in New York. उन्होंने कहा कि हमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, इंक्लूडिंग द आइडिया ऑफ अ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एआई सेफगार्ड्स. अपनी 20 मिनट की स्पीच में ही वाज एडवोकेटिंग रिवाइटलाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म टू टैकल अक्यूट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस. He said a framework convention like the one adopted by the UN on climate change could be in the form of a broad international treaty that establishes foundational principle and cooperative institutions and provides the architecture for international action. ऐसी ही एक कॉल करी गई बाय टर्किश प्रेसिडेंट. साथ ही साथ में उन्होंने अपना एड्रेस जो है टू द यूएन इसलिए इस्तेमाल किया टू स्ट्रेस द नीड फॉर अ कॉमन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर